आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उपरक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरामैया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: करता है। न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
0: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि किसी चीज की शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी भला ही होगा। तो उम्मीद यही करती हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत यानी कि आज से ये पूरा हफ्ता आपका अच्छा बीते, हफ्ते के बाद वो हफ्ता, इस तरह से दिन ब दिन साल भर साल आपका अच्छा ही बीते।

0: बात नहीं है कि लाफ्टर डे, बट इट इज टू डेडिकेट टू शो दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हंसना मत भूलना, हमेशा हंसते रहिएगा और हंसाते रहिएगा, राइट? सो दैट्स अबाउट अ स्माइलिंग डे. मैं लेकिन श्रीजा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि डू यू रिमेम्बर वन जोक राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड की अब तक, दैट यू नो वेन एवर यू थिंक अबाउट इट और समथिंग दैट मस्ट हैव हैपेंड इन योर लाइफ विच ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस इवन नाउ. सोचते रहिए वाइल वी एंजॉय वन सॉन्ग एंड देन आई विल कैच अप अगेन. तो
1: श्योर
0: आप लोग भी
1: मैम,
0: सोचते रहिएगा, कोई एक ऐसी चीज होगी या यू नो जब फैमिली फंक्शन में या कभी ऐसे होता है ना, समर वेकेशन इज द टाइम दैट यू मीट अप विद ऑल योर कजिन्स, ऐसे होते हैं ना वेकेशन टाइम कजिन सब मिलते हैं तो बहुत हंगामा होता है. तो कोई एक
1: श्योर.
0: कजिन के ऊपर ऐसा कोई एक जोक होगा जो हमेशा मारते ही रहते हैं. सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए वाइल आई प्ले द सॉन्ग आई एम अलाइव बाय सेलिन डियॉन.

0: कुमार सानू और साधना सरगम की मधुर आवाज में दीवाना मूवी का ये गाना अभी आपने सुना ऑन आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइव रंगीन। तो इस गाने से पहले मैंने आप सबसे बात किया था मैंगो लस्सी के बारे में। श्रीजा ने भी बताया कि उसे नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, तो लीजिए झट से पेन ले लीजिए। श्रीजा आप तैयार हो सुनने के लिए?
1: यस यस।
0: तो पेन लीजिए, पहले इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए, मैं फटाफट आप सबसे शेयर करूंगी। बहुत ही आसान है और जरूर पीजिएगा। एक और महीना है समर का और सीजन ऑफ मैंगोज। तो इंग्रेडिएंट्स सुन लीजिए, ताजा आम 4, यू नो मस्त पल्पी वंस, देन दही 2 कप, चीनी 5 टेबलस्पून। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, फिगर कॉन्शियस हो, तो चीनी मत डालिए, चीनी के बदले या तो शहद डालिए नहीं तो गुड़ डालिए, ओके, बेलम और हनी, या सो इलायची पाउडर एंड पुदीना के पत्ते फॉर गार्निशिंग। सबसे पहले क्या करना है, ये तो सभी को पता है, द इनहेरेंट और क्या बोलते हैं बेसिक रूल, अच्छे से मैंगोस को वॉश कीजिए, छिलके निकाल दीजिए, सिर्फ उसका पल्प लीजिए। मेक श्योर आप उसके गुठलियों को नहीं ले रहे हो, नहीं तो फिर मिक्सी में जब आप पीसोगे ना तो पट पट पट साउंड आएगा और उसका जो ये रहता ना कड़वापन भी आ जाएगा। सो मेक श्योर यू जस्ट टेक द पल्प, उसमें दही ऐड कीजिए, चीनी एंड एज आई सेड हनी गुड़ जो भी आपका प्रेफरेंस हो डाल के एक साथ मिक्सी कर लीजिए। रेडी बोली थी, इट्स रेडी। आपको जिस तरह से पीना है, मोस्टली पीपल एंजॉय ठंडा, सो आइदर कीप इट इन द फ्रिज देन टेक इट आउट एंड गार्निश इट विद फ्रेश पुदीना लीव्स एंड इलायची पाउडर, और एल्स बर्फ के टुकड़े। समर में बर्फ से खेलते बहुत है। आपने खेला था बचपन में श्रीजा?
1: यस यस, मुंह में लगा के भी खाते थे।
0: अच्छा, yeah, people do enjoy, kids, you know, they have fun with the ice cubes.
1: Yes.
0: They make and then just, you know, try to put it in the mouth and then body pe lagao, face pe lagao.
1: Haan, this is... khelte the, dusron ke dresses mein daal dete the, kabhi kabhi.
0: Yeah. People, have you ever tried stamping on the ice and then standing? It's a game. No. Bachpan mein khelte the. Uh-huh. Ice cubes niche laga dete and, you know, you have to stand on it. So, जो ज्यादा देर ठहर पाएगा वो जीत जाएगा। आई मीन समर में पेरेंट्स भी मना नहीं करते थे, नहीं तो पानी के साथ खेलने कौन देता घर पे, राइट? सो ये थी मैंगो लस्सी और बचपन की यादें ताजा करने वाली बात। मूविंग ऑन टू मैंडी मोर, इट ओनली टुक अ मिनट।

यू आर ट्यून टू आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111, तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा।

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीला मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख मन की बात में करते हैं, उन विषयों के विशेषज्ञों को हम आमंत्रित करते हैं अपने कार्यक्रम में और उस विषय के बारे में अपना ज्ञान वर्धन करते हैं उनकी बातों से। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया है सेंसस का, जनगणना का, और हमें प्रेरित किया है कि हम इस विषय के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग भी दें। तो इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। मैं स्वागत कर रही हूँ सबसे पहले श्री अजय गर्ग जी का। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और मैं स्वागत कर रही हूँ डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा का। आप DD हैं, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: तो आइए साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने जनगणना का उल्लेख किया है।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है।

0: घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है या गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें, जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: तो सुना आपने किन शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरित किया है कि इस विषय के बारे में हम जानें और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग करें। तो अब मैं बहुत सारे सवाल लेकर, अपने सभी श्रोताओं के मन में जो सवाल है वो लेकर, अपने साथियों के सवाल लेकर यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ और हमारे जो दोनों विशेषज्ञ हैं आज हम इनसे जानेंगे इनके उत्तर। तो मैं शुरुआत करती हूँ अजय जी से। अजय गर्ग जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं जनगणना, तो आखिर इसकी जरूरत क्यों है देश को?
2: हमारी जो नीतियाँ बननी हैं
1: जी,
2: तो हमारे पास पूरा लेखा जोखा होना चाहिए कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में, शहरों में, गांवों में कितने लोग रह रहे हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, कितने हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, कितनी पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, उम्र के हिसाब से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तभी आप उसके हिसाब से स्वास्थ्य की, समाज कल्याण की और विभिन्न योजनाओं को आप एक मूर्त रूप दे सकते हैं
1: जी।
2: आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जनगणना भारत में सबसे पहले 1871 में हुई
1: जी,
2: लेकिन वो एक साथ नहीं हुई थी, मतलब हर प्रांत में अलग अलग समय पे हुई थी, उसे नॉन सिंक्रोनस बोलते हैं। 1881 में पहली बार जनगणना सिंक्रोनस हुई, सभी एक साथ हुई। उसके बाद ये हर 10 साल में एक जनगणना होती रही
1: जी।
2: जनगणना ही हमारी सभी नीतियों का डेटा प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर जैसे परिसीमन हुआ
1: जी,
2: हमारी जो विधानसभा की सीट्स हैं, लोकसभा की सीटें हैं, उन सब के जनगणना में क्या सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ हम जनगणना में सिर्फ लोगों की संख्या की गिनती नहीं कर रहे हैं कि कितने मेल हैं, कितने हमारे वुमेन हैं, कितने बच्चे हैं, उसके साथ साथ हम जो हैबिटेशन है
1: जी,
2: जैसे जहाँ पे लोग रहते हैं, उसकी भी हम डिटेल इकट्ठी करते हैं कि दीवारें कैसी हैं, छत कैसी बनी हुई है, किस तरीके का ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, और पानी की सुविधा किस तरीके की है, 30 तरीके की हम एट्रीब्यूट्स इकट्ठी करते हैं
1: जी,
2: जिसमें लोग रह रहे हैं। और इसके बाद जिसे हम पॉपुलेशन इनुमरेशन कहते हैं, जिसमें लोगों की हम संख्या की गणना कर रहे हैं, उसमें लोगों की जो हर व्यक्ति की करीब 25 से 30 हम डिटेल इकट्ठी करते हैं कि कितना पड़ा हुआ है, किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट में है वो, उसका जो व्यवसाय का जगह है कितना दूर है उससे, कितना उसे चलना पड़ता है
1: जी,
2: कौन से धर्म का है वो, इस बार हम जाति का भी उनसे डिटेल लेंगे
1: जी,
2: तो इस तरीके से कौन सी भाषा बोलता है वो, तो हमारे पास बहुत रिच डेटाबेस है जिसके आधार पे हम लोग, तो ये मोटा मोटा सा जनगणना का
1: जी। मेरा इससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल था, अक्सर लोगों के मन में ये बात आती है कि जब जनगणना की बात है

0: सिर्फ ये जान लेना काफी होना चाहिए कि इस घर में 5 व्यक्ति हैं और इस घर में 7 व्यक्ति हैं, यानी हम एक नंबर हैं और कुल संख्या आपको पता चल गई। इतने विस्तार में क्यों जानना है कि हम क्या काम करते हैं, हम कैसे घर में रह रहे हैं? लेकिन अभी आपकी बातों से ही ये जवाब मिला कि आगे जो नीतियां बनेंगी, जिस तरह के बेनिफिट्स दिए जाने हैं लोगों को, उनके लिए भी ये डेटा जो है काम आएगा बाद में।
1: जी
0: तो एक सवाल मैं जितेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी, जनगणना होनी है ये सबको पता है, लोग तो तैयार भी हैं, इस बारे में बात भी हो रही है, लेकिन उससे पहले पूरा विभाग जो है, पूरा मंत्रालय जो है, वो किस तरह की तैयारियों में लगा है? आजकल काम का कितना दबाव है वो बताएं।
1: देखिए, काम का दबाव तो बहुत है अभी जी। जब आप मंत्रालय का जो तैयारी के बारे में जैसे पूछ रहे हैं, ये लगभग अभी 1 साल पहले ही ये शुरू हो गई थी
0: जी।
1: और ये जनगणना जो होती है ये एक सेंसस एक्ट के तहत होती है, ये 1948। तो पहले हमारे जो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो पहले अपना इंटेंशन पहले वो दर्ज करते हैं गेजेट में। तो ये आई थी आपके जून महीने में आई थी, 2025 जून महीने में आई थी
0: जी।
1: उसके बाद हर राज्य और केंद्र शासित जो अंचल है वो भी अपने मतलब गेजेट में उसको फिर से रीनोटिफाई करते हैं कि हमारे भी स्टेट में, यूनियन टेरिटोरी में भी सेंसस करानी है
0: जी।
1: तो इस तरीके का एनसीटी और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इसको रीनोटिफाई किया था जुलाई में, जुलाई 2025 साल में। तो 2025 जुलाई महीने से लेकर आज तक हर दिन हम तैयारी में जुड़े हैं और अभी सेंसस भी ऐसे स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि मतलब बिना प्री प्लान करते हुए ये होती है सेंसस जैसे काम में, कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है और लगभग लगभग इसमें, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 50-55 हजार से भी ज्यादा लोग इसमें जुड़े हैं अभी काम में
0: जी।
1: जी
0: तो अजय जी, अगले सवाल से पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना यहाँ पर पूछना चाहूंगी और उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे पास है।
2: जी जी जी, तो मुसाफिर हूँ यारों
0: जी।
2: हाँ,
0: ये गाना पसंद है आपको? ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

बहुत ही प्यारा सा गाना। गाने में तो भले ही जो कलाकार हैं और जो हमारे सिंगर हैं उन्होंने कह दिया ना घर है ना ठिकाना, लेकिन हमें अपने घर ठिकाने का पूरा पूरा और सही सही पता जरूर बताना है सेंसेस के लिए। तो अब मैं अजय जी आपसे जानना चाहूंगी कि

0: जब हम बात करते हैं जनगणना की, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे डिटेल इस समय हम जो हैं वो ले रहे हैं, लोगों के डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे में और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपनी ओर से भी जो जनता है वो उसमें सहयोग करेगी, शुरुआत करेगी, तो संख्या बल जो है दुनिया में वो हमारी एक ताकत है, लेकिन जब जनगणना की बात आती है तो यही काम बहुत बड़ी चुनौती भी बन जाता है।
1: जी
0: तो ऐसे में ये बताएं कि आपने किस तरह का जो पूरा एक तंत्र है वो खड़ा किया है, किन लोगों को शामिल किया है इसमें, और वो कितने रिलायबल हैं, हम कितना भरोसा करते हैं उन लोगों पर जो घरों में आएंगे और हमारा डेटा इकट्ठा करेंगे।
1: जी इसमें क्या होता है कि जो घर में जाते हैं, हर
0: जी
1: घर में विजिट करते हैं, उनको हम इनोमिनेटर कहते हैं।
0: जी
1: उसमें हमने क्या किया है कि दिल्ली को करीब हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, और हर ब्लॉक में करीब 200 के आसपास घर हैं।
0: जी
1: तो एक ब्लॉक को एक इनोमिनेटर का काम दे दिया जाता है, और इस तरीके से 6 इनोमिनेटर के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है। तो करीब हम लोगों ने 46,000 इनोमिनेटर लगाए हैं, तो करीब 8-9 हज़ार सुपरवाइजर लगाए हैं।
0: जी
1: फिर उनके ऊपर होते हैं चार्ज ऑफिसर, और चार्ज ऑफिसर के ऊपर होते हैं डीएम, डीएम, एडीएम और एसडीएम, अपने अपने एरिया के हिसाब से। तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट का जो है इंचार्ज सेंसस का, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। जो इनोमिनेटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के जहाँ पर हैं। सिमिलरली जो सुपरवाइजर हैं वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर लोग हैं। हर इनोमिनेटर के पास एक अपना आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, एक उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, तो आप देख सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जिस डिपार्टमेंट का होगा उस डिपार्टमेंट का भी उसके पास कार्ड होगा। कोई आपको परेशानी है तो आप अपने एरिया के जो एसडीएम हैं या डीएम हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने एक एलोबरेट वो कार्यक्रम चलाया है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी आरडब्ल्यूएच के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और पब्लिसिटी भी हमारी हो रही है, तो ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप अपना संतुष्टि कर लें, कोई आता है आपको विजिट करने आता है तो उसका आई कार्ड देखें, वो देखें। और दूसरी बात ये कि जो हमारी एमसीडी एरिया में जनगणना है पहले फेज की, वो हमारी 16 मई से शुरू हो रही है,
0: जी
1: 16 मई से लेके 14 जून तक, तो उस समय लोग आएंगे वहां पर।
0: जी
1: जी
0: यानी एक स्पेसिफिक टाइम है, और जो लोग आएंगे उनके पास
1: आई
0: अपना आई
1: कार्ड
0: कार्ड
1: होगा,
0: भी होगा और उस तरह के दस्तावेज होंगे कि उनसे हम पूछ सकते हैं,
1: पूछ
0: और
1: सकते हैं।
0: ये ज्यादातर उस तरह के लोग हैं जो पहले ही सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, काम कर रहे
1: Yes.
0: हैं।
1: सरकारी
0: बिल्कुल जी,
1: कर्मचारी हैं,
0: सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन पर भरोसा आसानी से किया जा
1: आसानी
0: सकता
1: से
0: है। आम लोग जो डेटा देंगे वो पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा।
1: वो पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा।
0: जी
1: वो जो आपने डेटा दिया है वो इनोमिनेटर अगर उसको किसी को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है।
0: जी तो जितेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे जो डेटा दिया गया, क्या उसके सत्यापन के लिए भी कुछ और हमें कागजात देने होंगे? अगर एक व्यक्ति दो घरों में रह रहा है, वो अलग अलग जोन में वो घर पड़ते हैं, तो क्या सत्यापन के लिए भी कुछ देना होगा? और जैसे छात्र हैं, किराए पर रह रहे हैं, तो उनका परिवार कहीं और है, वो कहीं और है, ऐसी परिस्थितियों में क्या करना होगा?
2: देखिए, हमारे जनगणना में हम एक चीज़ को हम फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं डिफेक्टो मेथड, मतलब
0: जी
2: जो जहाँ पे हैं नॉर्मली, जो जहाँ पे रह रहे हैं हम वहाँ
0: जी
2: पे उनको गिनेंगे।
0: जी
2: तो जैसे आप अभी दो ग्रुप ऑफ पीपल का नाम लिए, एक तो
0: जी
2: जो रेंट में रहने वाले लोग और
0: जी
2: जो है कि स्टूडेंट्स, और जिसका नंबर शायद बहुत ही ज़्यादा है दिल्ली जैसे जगह में। अगर वो लोग नॉर्मली यहाँ पे रहते हैं
0: जी
2: और सेंसस के दौरान अगर उनको यहीं पे अगर पाया जाता है, जो भी एनिमल उनके घर में जाएंगे, तो उनकी गिनती यहीं होनी चाहिए।
0: जी
2: और इसमें आपने और जो दूसरे जो सवाल पूछे कि सत्यापन कैसे किया जाएगा, तो सेंसस में हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते हैं,
0: जी
2: कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। रेस्पोंडेंट जैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, हम उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, और ये टोटली ये रेस्पोंडेंट बेस्ड आंसर्स होती है ये, तो इसमें उसको वेरिफिकेशन करने की कोई स्कोप नहीं है।
0: जी
2: तो जो भी एनुमरेटर जाएंगे वो केवल हमारे जो शेड्यूल में जो दिया हुआ क्वेश्चन को वो पूछेंगे, और रेस्पोंडेंट जो आंसर देगा उसको वो रिकॉर्ड करेंगे।
0: जी
2: और ज़्यादातर ये हमारे दिल्ली जैसे जगह पे कि हम लोग देखे हैं पिछले सेंसस में भी कि जो रेंट में रहते हैं या तो जो स्टूडेंट्स जो बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनका यहाँ पे गिनती सही नंबर पे होती नहीं है।
0: जी
2: और इस बार हम काफ़ी इस चीज़ के ऊपर जोर भी दे रहे हैं, जो पब्लिसिटी हमारे जो होती है उसमें भी हम बार बार सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बताते हैं कि अपने लोकल लेवल पे भी ये जागरूक लाए कि जो रेंट में रहने वाले लोगों को भी यहाँ पे गिना जाए।
0: जी
2: और इसके पीछे का खास एक मकसद भी है, अगर उनके नंबर हम दिल्ली में अगर नहीं गिनेंगे तो बहुत बड़ी एक प्रोपोर्शन लोगों को हम छोड़ देंगे,
0: जी
2: और आप अगर देखेंगे तो दिल्ली के जो भी रिसोर्स

0: है, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आपके बेसिक अमेनिटीज जिसमें ड्रिंकिंग वाटर हो, तो ये तो दिल्ली के ही यूज़ कर रहे हैं। तो
1: जी
0: अनलेस अनटिल उनका नंबर हमें पता चले, बेटर प्लानिंग भी नहीं बना सकते हम दिल्ली के लिए।
1: जी
0: तो ये इससे आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये जनरल पब्लिक को ये कहना चाहेंगे कि अगर उनके घरों में कोई पीजी में रह रहा हो या तो कोई रेंट में रह रहा हो, तो उनको भी जरूर गिनती कराए
1: जी
0: जनगणना में।
1: और दिल्ली हम सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, भारतवर्ष में ही यानी हर स्थान पर यही
0: जी
1: प्रक्रिया
0: जी
1: है।
0: जी ये दिल्ली का मैं इसलिए कह रहा हूँ
1: जी
0: क्योंकि हम लोग दिल्ली को देखते हैं, बट ये जो मैंने जो बताया अभी, ये पूरे भारत के लिए लागू है।
1: जी अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि बाद में नीतियां भी बनाई जाएंगी, उनका लाभ मिलेगा आम लोगों को, लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा भी भाव होगा कि अगर हम ना बताना चाहें अपने बारे में, हम जनगणना में भाग ना लेना चाहें, तो क्या हम पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या ये जरूरी है भाग लेना?
0: हाँ, जरूरी है।
1: जी
0: सेंसस जो कानून है 1948 का, वो हर नागरिक के ऊपर एक जिम्मेवारी देता है कि
1: जी
0: वो सही जानकारी दे
1: जी
0: जो उनसे मांगी जाएगी, जो पूछी जाए।
1: जी और ऐसे में क्या डबल काउंटिंग भी हो जाती है, जैसा कि अभी बात की जितेंद्र जी ने, कि कोई किसी का परिवार मान लिया उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहा है छोटे से गांव में, और उनका बच्चा दिल्ली में आकर पढ़ रहा है या मुंबई में है, तो मुंबई में वो रेंट पर रहता है, वहां उसकी गिनती हो गई है, ऐसे में परिवार में जो माता पिता हैं वो भी अगर उसके बारे में बताएं, तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें पता चल पाए कि दो जगह एक ही व्यक्ति का नाम गिना जा चुका है?
0: उसको हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि 100%, लेकिन जो नियम ये है कि जो जहाँ पर नॉर्मली रहता है वहीं पे काउंट होगा।
1: जी
0: अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है तो वो यहीं पे काउंट होगा,
1: जी जो जहां रह रहा है उसकी गिनती
0: नॉर्मली जहाँ
1: वहीं
0: पे
1: पर
0: रह
1: होनी
0: रहा
1: चाहिए।
0: है, यहाँ
1: जी
0: सामान्यता जहाँ पे रह रहा है वहीं पे काउंट होगा, वो वहीं पे उसे अपने आप को काउंट कराना चाहिए।
1: जी जो मकान मालिक होते हैं उनके मन में अपनी संपत्ति को लेकर अक्सर एक डर रहता है, इसीलिए जो रेंट एग्रीमेंट भी होते हैं कई बार वो बहुत डर के साथ बनाते हैं या कुछ क्लॉज उसमें रखते हैं, ऐसे में अगर जनगणना में किराएदारों को उसी संपत्ति पर गिना जाएगा, उनका एड्रेस वही जनगणना में शामिल होगा, तो क्या आगे चलकर मकान मालिक को इससे कोई खतरा हो सकता है?
0: नहीं
1: उन्हें डरना चाहिए क्या इस
0: नहीं
1: बात से?
0: नहीं जो आपने जनगणना में इन्फॉर्मेशन दी है
1: जी
0: वो ना तो कोर्ट उसको मंगाती है ना आरटीआई में वो प्रोवाइड की जाती है।
1: जी यानी जो कहा जा रहा है कि अगर आपके यहाँ कोई किराएदार है, अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट रह रहा है
0: हाँ
1: और पीजी के रूप में रह रहा है, तो उनकी भी सही जानकारी देनी चाहिए, और आगे चलकर वो आपकी
0: हाँ
1: संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर
0: आपकी, हाँ
1: सकते,
0: उसके आधार पे नहीं कर
1: उसके
0: सकता है,
1: आधार पर नहीं
0: उसके
1: कर
0: आधार।
1: सकते हैं। जी मैं अब जितेंद्र जी आपकी पसंद का कोई गाना यहाँ पर सुनवाना चाहती हूँ अपने श्रोताओं को।
0: मेरे पसंद का एक गाना आप चला सकते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।
1: जी तो आपकी पसंद का गाना सुनवा
0: जी
1: रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जनगणना की और हमारे साथ स्टूडियो में इस समय हैं श्री अजय गर्ग। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं, और साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस में, और हमारे दोनों ही जो विशेषज्ञ हैं हमारी जानकारी बढ़ा रहे हैं जनगणना की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो अजय जी, आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जनगणना का प्रोसेस है, आपने बताया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो हमने सुना उसमें भी उन्होंने कहा कि शुरुआत जो है वो जनता को अपनी ओर से करनी है, दो चरण इसके आमतौर पर होंगे। तो वो पहला चरण क्या है, हम किस तरह से ऑनलाइन कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे अपनी जानकारी देंगे?
1: हाँ, इस बार जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन कहते हैं, स्वगणना, उसको रखा गया है। तो इसमें जैसे हम एमसीडी एरिया का ले लें, तो एमसीडी एरिया में 1 मई से लेकर 15 मई तक आप स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना व सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब ये है कि आप उस पोर्टल पे चले जाएं
0: जी,
1: और बहुत आसान है, अपनी डिटेल खुद भर दें उसमें, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं भरने में
0: जी।
1: और जैसे ही आपने भर के उसको आपने सबमिट किया पोर्टल पे, तो आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है
0: जी,
1: जिसे सेल्फ इनोमरेशन आईडी बोलते हैं। तो इनोमरेटर जब आपके यहाँ पे आएगा तो आप उसे अपनी ऐसी आईडी दे देंगे, तो फिर वो नहीं भरेगा डिटेल, जो आपकी डिटेल है उसके पास आ जाएगी
0: जी,
1: और वो उसके हिसाब से आगे। तो इससे काम काफी त्वरित हो जाएगा। बाहर के कई पाश्चात्य देशों में स्वगणना का है, तो हमारे यहाँ पर ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। डिजिटल सेंसस का एक एक कंपोनेंट है
0: जी।
1: और दूसरा पक्ष क्या होता है, जब हमारा 1 से 15 तक स्वगणना है, सेल्फ इनोमरेशन है, फिर 16 मई से लेकर 14 जून तक एमसीडी वाले एरिया में
0: जी
1: हमारा फील्ड ऑपरेशन, मतलब इनोमरेटर घर घर जाएंगे, और जिन्होंने स्वगणना नहीं कर पाते हैं तो वो उनका डिटेल इकट्ठी करेंगे, और स्वगणना वालों की, सेल्फ इनोमरेशन वालों की सिर्फ ऐसी आईडी ले लेंगे, नंबर ले लेंगे और
0: जी।
1: इस तरीके
0: तो प्रक्रिया जल्दी भी हो जाएगी, समय
1: जल्दी
0: कम लगेगा,
1: बहुत जल्दी हो जाएगी
0: जी। ऐसे में मुझे ये जानना है कि जब जनगणना हो रही है और घर पर अधिकारी आए हैं, उन्हें डिटेल देनी है, ऐसे में अगर कुछ समय के लिए कोई विदेशी नागरिक किसी परिवार में रुके हुए हैं या कोई ट्रैवलर हैं वो रुके हैं किसी वजह से, आजकल बीएनबी सिस्टम भी है, तो घरों में पेइंग गेस्ट के रूप में कुछ समय के लिए रुकते हैं, क्या उनकी डिटेल भी देनी जरूरी है?
1: देखिए, व्यक्ति की जो डिटेल है वो तो हमारा जो नेक्स्ट फेज होगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन वाला, उसमें ली जाती है। अभी तो बेसिकली घरों का सूचीकरण हो रहा है
0: जी,
1: एक तरीके से हम जो हाउसेज हैं उनकी डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, बस ये जरूर पता कर रहे हैं कि भाई कितने, वो मतलब एक ही आदमी बताते हैं जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है
0: जी,
1: कि भाई हमारे इसमें 4 लोग हैं या 5 लोग हैं
0: जी। ऐसे में जिस व्यक्ति के नाम वो मकान है, अगर उनका देहांत हो चुका है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो किसका नाम वहाँ लिखवाया जाएगा मुखिया के तौर पर, परिवार के मुखिया के तौर पर?
1: हेड ऑफ द हाउस होल्ड तो कोई जरूरी नहीं है कि वो घर का मालिक ही हो, जो भी वहाँ पर, बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी जानकारी दे रहा है घर के बारे में, जिसको घर के बारे में मालूम हो,
0: तो उस एड्रेस पर एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को और वो परिवार की
1: जानकारी दे रहा है
0: जी। तो इस तरह के कंफ्यूजन नहीं रखने हैं कि किसके नाम मकान है,
1: नहीं, और नहीं, वो व्यक्ति वो नहीं
0: जी।
1: बात यह है कि कोई परिवार रह रहा है एक घर में, इस मान लीजिए इधर कोई रह रहा है
0: जी,
1: तो इसको इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर्स की एट्रीब्यूट्स हैं वो
0: जी वो बताने हैं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी सर ने बताया कि एक घर का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो रहा है
1: जी,
0: तो जो कच्ची कॉलोनियां होती हैं, झुग्गी बस्ती,

0: जो है,
1: जी
0: जैसे एक परिवार वहां रह रहा है, वो एड्रेस कहीं कागजों पर पक्का नहीं है,
1: जी
0: तो ऐसे में वो क्या करें?
1: जी देखिए, जनगणना में हम कभी ये नहीं देखने के लिए कोशिश करते हैं कि ये घर ऑथोराइज कॉलोनी में है कि अनऑथोराइज कॉलोनी में है, रहने वाले आदमी के नाम पे ये कागजात बनाए कि नहीं बनाए, ये हमें नहीं देखना है।
0: जी
1: हमारा जो मकसद है कि पूरे अगर कोई एरिया, जैसे आप, मैं दिल्ली का ही फिर से एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, तो जैसे दिल्ली में जैसे सर बता रहे थे कि 46,000 के आसपास हम लोगों ने ब्लॉक्स बनाए हैं, तो इन ब्लॉक्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, कहने का मतलब है जितने भी स्ट्रक्चर मकान तो ये भी होंगे, उनको हम पहले फर्स्ट फेज में उसका हम कवर करेंगे,
0: जी
1: जिसको हम कहते हैं मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस, उसमें जाके पूरी डिटेल लिया जाएगा। तो इसमें कहीं पर भी हम ये नहीं पूछ रहे हैं जो स्ट्रक्चर में जो रहने वाले पर्सन जो है एक्चुअल उसका वो ओनर है कि नहीं है,
0: जी
1: ये हम कभी नहीं पूछते।

0: है उसने सबमिट कर दिया तो फिर चेंज नहीं होगी वो,
1: फिर उसमें सुधार नहीं हो
0: फिर उसमें
1: सकता।
0: सुधार नहीं होगा।
1: जी, जैसे गांव देहात में होता है कि माता पिता अकेले रह रहे हैं, वृद्ध हैं, उन्हें पता नहीं है कि बच्चों ने जहां रह रहे हैं वहां अपनी जानकारी दे दी है, और वो भी बता देते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो परिवार का सदस्य तो है ही, तो वो डबल एक तरह से हो गया प्रोसेस। तो उसमें क्या किया जा सकता?
0: देखिए डुप्लीकेशन हो सकता है, जो यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि इस फेज में हम जो कर रहे हैं वो हाउसिंग सेंसस कर रहे हैं,
1: जी
0: तो उसमें हम मोटा मोटी यही मांग रहे हैं कि जो आदमी उस घर में नॉर्मली रहता है, तो हो सकता है कि लोग कुछ लोग इस तरीके का,
1: जी
0: वैसे
1: और
0: तो इन्यूमरेटर उनको जाके समझाता है, प्रॉब्लम है भाई, इन्यूमरेटर जाके समझाता है कि भाई जो बाहर रह रहे हैं वो मतलब उस तरीके से उनको जानकारी देता
1: जी,
0: है,
1: उस समय भी वो उनको पहले समझाया जाएगा, तब
0: समझाएगा
1: उनसे डिटेल ली
0: तब से
1: जाएगी।
0: डिटेल।
1: जी, और जो घर लंबे समय तक बंद मिले उनके बिहाफ पर कौन जानकारी देगा?
0: नहीं वो तो लॉक लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं,
1: जी
0: लॉक के
1: ठीक
0: लिए
1: है, तो जितेंद्र जी अब
0: इसमें
1: जाना
0: मैं थोड़ा
1: चाहेंगे।
0: सा सर ने तो बता दिए, बट जो हमारे जो एन्यूमरेटर या तो उनके ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनका बहुत ही एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग होती है
1: जी
0: 3 दिन की, और इस ट्रेनिंग के दौरान हम उनको अच्छे से समझाते हैं कि हमारे सेंसस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग कौन हो सकते हैं, जैसे आपका जो सवाल था
1: जी
0: कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स उसके होम स्टेट में हैं, तो वो एन्यूमरेटर जब उनके घर विजिट करेंगे तो वो जनरली कुछ प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे,
1: जी
0: जैसे सपोज ओल्ड पेरेंट्स है तो उनको ये पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या आपके साथ रह रहे हैं कि वो बाहर रह रहे हैं, तो इस तरीके एकदम से जाके ये सवाल नहीं करेंगे कि आपके इस घर में कितने लोग रहते हैं, थोड़ी सी प्रोबिंग टेक्निक्स को यूज करके वो अपने क्वेश्चन करेंगे
1: जी
0: ताकि हमारा जो सही जो सवाल है उनसे हम निकाल सकते हैं या तो पूछ सकते हैं, ले सकते हैं उनसे।
1: जी
0: और लॉक्ड वाला सर ने बता दिए, बट हमारे जो पहला चरण का जो समय सीमा जो है वो 30 दिन की होती है, तो ये 30 दिन के अंदर अगर एनुमरेटर फर्स्ट या सेकेंड डे में जाके देखा कि घर लॉक्ड है तो उसका कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सेकेंड या थर्ड टाइम भी जाके उसको चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले। कई बार जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो सुबह वो निकल जाते हैं अपने काम में, तो मैं भी अगले दिन वो शाम को जाए,
1: जी
0: और जैसे ऐसे भी परिवार है जो मंडे से लेके फ्राइडे तक वो बहुत बिजी होते हैं तो उनको रिविजिट करने के लिए वो एक बार सैटरडे या तो संडे को चले जाए, तो
1: जी
0: एक बार रिकन्फर्म करके उसको लॉक या तो वैकेंट लिखे
1: जी
0: ताकि हमारे यहाँ पे जो लोग जो रहने वाले एक्चुअल जो वो ना छूटे,
1: जी
0: मेन पर्पज हमारा वो है, इसीलिए 30 दिन का वो दिया गया है विंडो पीरियड। और इसी 30 डेज के बाद भी अगर उनको रिकन्फर्मेशन के बाद भी पता चलती है कि घर वैकेंट है लॉक्ड है तो उनको वही मार्क करनी है, लॉक्ड या वैकेंट।
1: जी,
0: जी
1: यानी पूरा प्रयास किया जाएगा कि
0: जी
1: सही जानकारी दर्ज हो
0: जी
1: और सही समय पर भी हो, जो सुविधाजनक
0: जी
1: समय
0: हाँ
1: है।
0: उसमें
1: जी
0: बेसिकली जो जितेंद्र ने बोला कि जो लॉक्ड हाउस है उसको एक दो बार,
1: जी प्रयास किया जाएगा।
0: फिर से विजिट किया जाता है। जी
1: जी, यहाँ अजय जी आपसे ही जानना चाहूंगी, जैसा अभी बताया जितेंद्र जी ने कि प्रशिक्षण दिया गया है और बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं, तो आपने भी बातचीत के माध्यम से बताया कि कई चीजें नई हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पहले जनगणना हुई है भारत में और जो इस बार हो रही है, तकनीकी तौर पर, व्यावहारिक तौर पर क्या अंतर है प्रक्रिया में?
0: तकनीकी तौर पर यह है कि इसमें हम डिजिटल टूल्स का
1: जी
0: इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके 4 डिजिटल टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो है जिसे हम कहते हैं कि CMMS पोर्टल,
1: जी
0: जहाँ पर पूरा सेंसस का जो मैनेजमेंट है तो उसको हम इसके थ्रू, इसमें जितने भी जैसे पूरी कंट्री में करीब 34 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनको इंगेज किया जा रहा है सेंसस प्रोसेस के लिए, तो उन सबका रजिस्ट्रेशन हो गया,
1: जी
0: फिर उनको अलॉटमेंट है कहाँ पे ड्यूटी करनी है, पूरा उसका मैनेजमेंट इसके माध्यम से हो रहा है। दूसरा है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, तो एक अगेन ये पोर्टल है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी जो होती है
1: जी
0: गांव की, म्यूनिसिपल वार्ड की, सब डिस्ट्रिक्ट की, उसके ऊपर हम उसको जियो रेफरेंस्ड ब्लॉक्स काट रहे हैं, मतलब एक ब्लॉक इनोमरेटर को दिया जाता है ना, तो जैसे दिल्ली में मैंने आपको बताया कि दिल्ली को हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है और
1: जी
0: ये 46,000 ब्लॉक जियो रेफरेंस्ड है। तीसरा जो हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्फ इनोमरेशन पोर्टल, जिसमें व्यक्ति अपना खुद का सेल्फ इनोमरेशन कर सकता है। और जो चौथा है, पहले बड़े बड़े फॉर्म लेके जाते थे हमारे इनोमरेटर जिसमें वो डिटेल लिखते थे वो सभी,
1: जी
0: अब सिर्फ मोबाइल फोन पे ऐप के माध्यम से वो डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, वो उससे बहुत तेजी से डेटा इकट्ठा हो रहा है,
1: जी
0: पहले 20-20 25-25 मिनट लगता था उसको भरने में फॉर्म को, अब हार्डली 10 मिनट लगता है।
1: जी। और व्यावहारिक तौर पर आपने बताया कि कुछ प्रश्न जो हैं वो और जोड़े गए।

0: लेकिन वो भी इसलिए कि बाद में बेहतर सुविधाएं दी जा सके।
1: हाँ, क्वेश्चन ज्यादा नहीं अब जोड़ेंगे। 2011 के उससे
0: जी
1: कुछ ही अमेंडमेंट हुए हैं। बहुत एक्चुअली क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है। एक हाई लेवल हाई पावर्ड कमेटी होती है,
0: जी
1: वो डिसाइड करती है कि सेंसस में कौन कौन से सवाल, कि कोई डिपार्टमेंट कहता था मुझे इसका चाहिए, डिटेल चाहिए।
0: जी जैसे कई बार आम लोग जो हैं वो इस तरह की शिकायतें भी करते हैं कि इस एरिया में हमारे इतने लोग हैं लेकिन सीधी बस सुविधा कोई नहीं है, या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो समस्या है, या बिजली पानी की दिक्कत है, ये होता है। तो हम एक विभाग को जानकारी दे रहे हैं लेकिन आगे ये कई विभागों तक पहुंचती है और कई
1: सभी
0: बेहतर
1: तक।
0: सुविधाएं हमें मिलती हैं, उसमें
1: जी
0: चिकित्सा सुविधा भी हुई,
1: जी
0: कई तरह के सरकारी
1: जी
0: डिस्पेंसरीज, ये सब। तो और इसीलिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है।
1: जरूरी है।
0: जी अब जितेंद्र जी ये बताएं कि जब हम अपनी जानकारी देते हैं सेंसस के लिए तो क्या इससे कोई आर्थिक लाभ भी होगा? कुछ लोगों के मन में ये बात है कि हमें बदले में सरकार से कुछ पैसा मिलेगा क्या, हम अपनी जानकारी दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो।
1: देखिए, सेंसस में कोई डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक के लिए नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो सेंसस एकमात्र सोर्स है जो वार्ड लेवल, जो आपके अर्बन एरिया का सबसे जो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है,
0: जी
1: और रूरल एरिया में जो विलेज है, तो इतने लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डेटा प्रोवाइड करती है। और जैसे हम बता रहे थे, सर भी बता रहे थे कि सेंसस दो फेज में हो रही है। पहला फेज में हम हाउस लिस्टिंग करते हैं और हाउस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी कलेक्ट करते हैं, और सेकेंड में पॉपुलेशन एनुमरेशन करेंगे, मतलब उतने वार्ड में, उतने एरिया का वार्ड का जो भी होगा उसमें कितने लोग रहते हैं वो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं,
0: जी
1: सिमिलरली विलेज का भी। तो इतने छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब ये गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा कि इतने घरों में भी, इतने नंबर ऑफ घरों में अभी LPG कनेक्शन नहीं है, कि
0: जी
1: लैट्रिन फैसिलिटी नहीं है, कि इनके अभी भी जो मकान जो है वो कच्चा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे स्कीम के लिए
0: जी
1: शायद वो बेनिफिशियरी बन जाएंगे। और या तो आप अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना जो चल रही है अभी
0: जी
1: सरकार के द्वारा, तो उसमें जिस जिस घरों में अभी LPG कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ के वो सब घर अभी यहाँ के लिए बेनिफिशियरी बन जाएंगे।
0: जी
1: तो ये एक डायरेक्टली कनेक्शन है सेंसस का डेटा एंड हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो
0: जी
1: यहाँ पे आप एकदम डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे आर्थिक जैसे आप बता रहे थे, वो ना देख के जितने लोग यहाँ पे सही तरीके से अपने पार्टिसिपेशन करेंगे और आंसर्स देंगे,
0: जी
1: उतने अच्छे पॉलिसी एंड प्रोग्राम बन सकती है देश के लिए, वो भी छोटे से छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे।
0: जी तो
1: जैसे आपको एक उदाहरण दें कि हम फेज वन में डिटेल
0: जी
1: इकट्ठी करते हैं कि किस तरीके का ईंधन इस्तेमाल होता है घर में, तो फिर हमारे पास पूरा डेटा है कि भारत के कौन से हिस्से में
0: जी
1: लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, कितने घरों में LPG है, क्या है, हमारे पास डेटा है। तो उसके
0: जी
1: हिसाब से हम एक प्लान कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जरूरत है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, जैसे ड्रिंकिंग वाटर की है जी, तो हम पता करते हैं कि साहब कितने घरों में नल है, तो हमारे पास हमें ये मालूम पड़ जाता है कि साहब इस डिस्ट्रिक्ट का ये जो हिस्सा है, इन इन ब्लॉक्स में, वहां पर वो कुएं से पानी लाते हैं, किसी पोखर से पानी लाते हैं, तो फिर हम एक इंटरवेंशन स्कीम बना सकते हैं कि साहब यहाँ पे हमें लगानी है,
0: जी
1: यहाँ पे टैप वाटर पहुंचानी है। तो जैसे सीवर फैसिलिटी है उसकी भी
0: जी
1: डिटेल हम इकट्ठी करते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इस कॉलोनी में सीवर फैसिलिटी नहीं है। तो ये डेटा इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे बैंकिंग का हो गया जी,
0: जी
1: तो बैंकिंग का हमें मालूम पड़ गया कि साहब इस शहर में, इस शहर के पर्टिकुलर पार्ट में बैंकिंग बहुत कम लोगों के अकाउंट खुले हैं, तो उस
0: जी
1: हिसाब से स्कीम बन सकती है कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए।
0: यानी ये जो डेटा है बहुत ही विस्तारित तरीके से सोचा जाता है इस पर, और किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया जाता
1: नहीं,
0: है, और जो सोचा जाता है वो पूरी सोसाइटी के
1: बिल्कुल
0: बेनिफिट के लिए सोचा
1: बिल्कुल
0: जाता है कि
1: बिल्कुल।
0: जिस चीज का अभाव है उसे हम दूर कर
1: हाँ
0: पाए।
1: जी
0: जी यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अजय जी, आपने बातचीत में कहा कि टीचर्स जो हैं वो जाएंगे डेटा कलेक्शन के लिए।
1: आपसे एक चीज शेयर करूंगा, उनका काम बहुत अच्छा रहा है।
0: जी
1: सभी जो हमारे शिक्षक टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं,
0: जी
1: बहुत अच्छा काम हमारे पिछले सेंससेस में हुआ है, और चूंकि एक तो उन्हें अपने एरिया का आइडिया भी होता है,
0: जी
1: तो वो भी फैसिलिटेट होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे इस बार हम वैकेशन के टाइम पे कर रहे हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी भी है,
0: जी
1: और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने।
0: जी
1: बाकी डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि टीचिंग फ्रेटर्निटी से।
0: जी तो जो भी शिक्षक सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने एरिया में आप सम्मानित व्यक्ति हैं और अपने एरिया को आप अच्छे से जानते हैं।

0: इसलिए ये जिम्मेदारी आपको
1: बिल्कुल
0: सौंपी गई
1: जी
0: है जी। तो इसी बात पर अजय जी, कौन सा एक गाना आप अगला हमें सुनवा रहे हैं?
1: साथी हाथ बढ़ाना।
0: जी, बहुत ही प्यारा सा गाना है और मुझे लगता है कि हमारे इस काम के लिए सभी साथियों का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। सभी एक दूसरे का साथ देंगे तो ये एक बहुत बड़ा जो काम है वो आसानी से हो जाएगा।

0: तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जनगणना की। हमारे साथ कार्यक्रम में श्री अजय गर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आप हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस में। और हमने अभी तक जाना कि जनगणना जो है ये क्यों जरूरी है, हमें अपनी ओर से क्या सहयोग करना है और कैसे सरकार जो है एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया इसके लिए अपना रही है, बहुत डिटेल में तैयारी की गई है ताकि हमारी सही जानकारी सरकार तक पहुंचे और बदले में हमें सुविधाएं मिले और साथ ही ऐसे फैसले लिए जा सके जो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैं जितेंद्र जी आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जो हमें फर्स्ट फेज में अपनी जानकारी देनी है उसके लिए जो ऐप है या वेबसाइट है कैसे करना है उसके बारे में आप हमें बताएं।
1: जी, ये पहला सेंसस है जहाँ पे सेल्फ एनिमिनेशन इंट्रोड्यूस हुआ है।
0: जी,
1: इससे पहले कभी ऐसे हुआ नहीं था। और ये जो जानकारी

0: का जो URL जो पोर्टल है वो sec.census.gov.in, इसमें आप
1: एक
0: जाके
1: बार दोहरा दीजिए।
0: जी SE फॉर सेल्फ एनुमरेशन डॉट सेंसस
1: जी
0: डॉट GOV डॉट इन
1: जी
0: इस पोर्टल में जाके आप अपने मोबाइल नंबर, घर का कोई भी सदस्य का मोबाइल नंबर से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं।
1: जी
0: उसके बाद अपने पसंदीदा भाषा भी चुन सकते हैं और उसके बाद आप अपने जो जानकारी जो है,
1: जी
0: जो हमारे पहला चरण में जितने भी 30 थे जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप जाके अपने पसंदीदा भाषा में पढ़ के उसको आप अपना जवाब दे सकते हो।
1: जी
0: और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, एक बार आपने भाषा को चयन करने के बाद अब आगे जाके उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर हिंदी अगर चुना है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसके पूरे जो आने वाले जो सवाल जो रहेंगे वो हिंदी में ही होंगे। और अगर किसी ने अंग्रेज अगर या तो इंग्लिश अगर उसने चुना है, तो आने वाले सभी सवाल उसका इंग्लिश में ही मिलेगा।
1: जी
0: तो जब भी अपना भाषा को वो चयन करे वो थोड़ा ध्यान से करे,
1: जी
0: क्योंकि आगे जाके वो चेंज नहीं कर सकते हैं वो। और ये सेल्फ एनुमरेशन का जो अभी टाइमलाइन जो है हमारे MCD एरियाज के लिए, 1 मई से लेके 15 मई,
1: जी
0: 15 दिन के अंदर आप अपना जानकारी अगर चाहेंगे तो इसी पोर्टल में जाके दे सकते हैं। और जैसे सर ने भी बताए थे कि एक बार आपने जानकारी आप इस पोर्टल में जाके देने के बाद 11 डिजिट का एक ऐसी ID जनरेट होगी, और इस ID को आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा।
1: जी
0: जब आपके घरों में एनुमरेटर विजिट करेंगे तो तब उनको आप ये ID दीजिएगा,
1: जी
0: ताकि इस ID के द्वारा वो आपका दिया हुआ जानकारी को वो फेच कर सकते हैं HLO ऐप में।
1: जी
0: ये हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप जो है एक डिजिटल एक ऐप है जिसके द्वारा पूरी जानकारी इसी सेंसस में इकट्ठा होने वाला
1: जी
0: है।
1: HLO ऐप
0: HLO ऐप, हाउस
1: जी
0: लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप।
1: जी और क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी है अगर कोई समझना चाहे इस प्रक्रिया को?
0: जी, इस बार सेंसस में जो हेल्पलाइन नंबर जो रखा गया है वो है 1855। तो अगर कोई दिल्ली के रहने वाले कोई व्यक्ति या तो कोई भी सिटीजन, अगर यहाँ पे से रहने वाले कोई भी पर्सन अगर इस नंबर पे फोन करेंगे सेंसस को लेके, अगर कोई उनके मन में कोई प्रश्न हो तो इस
1: जी
0: नंबर पे फोन करेंगे, तो हमारे जो भी कंसर्न जो पर्सन है इस लाइन को जो हैंडल करते हैं
1: जी
0: वो उनको वो हेल्प करेंगे, वो सहायता करेंगे।
1: जी
0: जी
1: उन्हें समझा भी सकते हैं कि
0: जी
1: कैसे
0: जी जी
1: एंटर करनी
0: जी
1: है
0: जी
1: डिटेल्स।
0: जी
1: जी और अजय जी, अब आपसे ये सवाल कि सच में जो लोग मुसाफिर हैं, ना घर है ना ठिकाना है, होमलेस लोग हैं जो जैसे बेगर्स भी हैं या कुछ उस तरह का काम करते हैं, फेरी वाले होते हैं कई लोग, या कोई उस तरह की स्थिति है, तो वो कैसे अपने आप को दर्ज करें, उन्हें क्या जानकारी देनी है?
2: जो होमलेस हैं तो होमलेस का जो उनका मकान सूचीकरण का तो नहीं होता है उसमें,
1: जी
2: जो दूसरा फेज होता है जिसको हम पॉपुलेशन एनुमरेशन कहते हैं, उस समय उनकी गणना होती है। तो उसमें एक दिन हमारा फिक्स होता है, अक्सर 28 फरवरी होता है, 28 फरवरी की रात को।
1: जी
2: तो हमारे जितने एनुमरेटर हैं पूरे, जहां पर भी इन लोगों का हमारे पास, पहले हम लोग मैपिंग कर लेते हैं कि अधिकतर इन लोगों का यहाँ रहने का है, और
1: जी
2: फिर उनका वो डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं
1: जी
2: इस तरीके से।
1: मतलब
2: फुटपाथों
1: वो
2: पे,
1: जहां भी जिस
2: जहां
1: जगह
2: पर भी है
1: रहते
2: वहीं पर,
1: हैं,
2: वहीं
1: जी
2: पे फुटपाथ
1: तो
2: पे जाते हैं हमारे लोग। पहले मैपिंग कर लेते हैं हम लोग कि
1: जी
2: यहाँ फुटपाथ पे लोग रहते हैं, वहाँ रहते हैं। तो फिर 28 तारीख की रात को, शाम को, वहां पर जाके सब लोग डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं होमलेस की।
1: तो अजय जी, आपसे बातचीत के माध्यम से और जितेंद्र जी ने जो बताया, हमने समझा कि सेंसस जो है वो कितनी जरूरी चीज है, और ये पूरी प्रक्रिया जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसमें हमारा योगदान यही है कि हम अपने बारे में सही जानकारी दें,
0: बिल्कुल
1: और जो भी हमारे घर पर आ रहे हैं वो एक विश्वसनीय पात्र हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हम अपना डेटा दे सकते हैं, और ये डेटा पूरी तरह गोपनीय भी है, और हमसे कुछ ऐसी जानकारी नहीं पूछी जा रही है जिससे बाद में हमें कोई नुकसान हो सकता है, तो
0: जी,
1: इतना भरोसा जो है वो रखना है।
2: बिल्कुल
1: जी जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब घरों में आएंगे, एक तरह का सर्वे ये हो रहा है, ऐसे में जो सवाल वो हमसे पूछेंगे, आम लोगों को जो जवाब देना है उन सवालों का, क्या पहले से वो पता कर सकते हैं कि कौन से सवाल हैं, और इसके अलावा कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो मना कर सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल। जो सेंसस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले से ही गैजेट में नोटिफाई होती है,
1: जी
0: तो जैसे अभी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए कुल 33 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
1: जी
0: ये क्वेश्चन की सूची ऑलरेडी ये गैजेट में नोटिफाई हो चुकी है, और HLO स्टार्ट होने से पहले भी ये अपने न्यूज़पेपर में भी आप लोग देख सकते हो, कई बार न्यूज़पेपर में भी ये आती है ये,
1: जी
0: तो ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन।

0: होती है और पब्लिक अगर जानना चाहेंगे तो गैजेट नोटिफाई जो किया गया क्वेश्चंस को भी वो अपने तरीके से, जैसे इंटरनेट से भी वो लोग देख सकते हैं,
1: जी
0: और हर एक चीज़ पब्लिक में ही है, पब्लिक डोमेन में ही है, तो उनको भी सब कुछ पता रहता है शुरू से ही कि
1: जी
0: जो एनुमरेटर उनके घर में विजिट करेंगे तो वो कौन से सवाल पूछने वाले हैं, तो इसमें कहीं मिसयूज ऑफ उनका जो पावर आप
1: जी
0: या तो पोजीशन का यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं उठता है।
1: जी
0: जी
1: तो
0: जी
1: सवाल पहले से हमें पता
0: पता
1: होंगे
0: होता
1: और
0: है।
1: उनके से
0: जी
1: ही
0: जी
1: जवाब देने
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: घरों में जब हम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो दिव्यांगजन हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है,
0: जी
1: या न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको नहीं गिना जाता
0: जी
1: है, तो क्या इनका भी बताना इनके बारे में ज़रूरी है?
0: जी देखिए, सेंसस में चाहे वो कोई भी जेंडर के क्यों ना हो, चाहे कोई भी एज का क्यों ना हो, चाहे
1: जी
0: वो कोई भी दिव्यांग या तो और कोई क्यों ना हो, हम सभी को गिनेंगे।
1: जी
0: और जैसे बताया गया है कि ये नॉर्मली रिसाइडिंग चाहे कोई भी एज का हो, चाहे कोई भी जेंडर का हो, हम उनको गिनेंगे। और इंडिया में ये हमेशा ये देखा गया है जो एल्डरली होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं,
1: जी
0: मे भी कुछ दिनों के वो है, और या तो दिव्यांग, तो इनको
1: जी
0: हम जनरली छोड़ देते हैं। तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आपके घरों में एनुमरेटर आए और आपको ये पूछे कि आपके घरों में नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर की संख्या क्या है,
1: जी
0: तो आप जरूर इन सबको इसमें इंक्लूड करें,
1: जी
0: क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सही संख्या जो दिव्यांग हो या तो एल्डरली हो अगर नहीं पता चलेगा, तो उनके लिए जो जरूरत की जो योजनाएं जो है वो नहीं बन सकती है,
1: जी
0: क्योंकि वो एक स्पेशल नीड के कैटेगरी के लोग हैं, और आप दूसरी भाषा में कैसे, वो सबसे मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं सोसाइटी के।
1: जी
0: एल्डरली के लिए उनके जेरियाट्रिक केयर की जरूरत होती है, डिजेबल पीपल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है,
1: जी
0: कि और कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, हेल्थ केयर हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है। तो ये एकमात्र के जरिया है जिसके द्वारा हम अपने घरों में जो रहने वाले ऐसे कैटेगरी के लोगों को बताएं, ताकि गवर्नमेंट उनके लिए भी सही योजनाएं प्रोग्राम बना सकती है।
1: जी
0: जी
1: एक आम धारणा रहती है, जब जैसे मतदाता पहचान पत्र होता है
0: जी
1: तो जिन लड़कियों की शादी हो जाती है या
0: जी
1: जो लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं
0: जी
1: वो अपने मूल स्थान पर ही मतदान करना चाहते हैं, तो
0: जी
1: मतदाता पहचान पत्र में एड्रेस चेंज नहीं करते,
0: जी
1: और जब कभी गिनती होती है तो मूल स्थान पर ही करवाते हैं।
0: जी
1: लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: अलग है।
1: आप जहां रह रहे हैं,
0: जी
1: जहां आप काम कर रहे हैं, आप वहां पर अपने आप को काउंट कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं। जी
0: जी, जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग में हमेशा जो टेम्पररी ऑप्शन लोगों को भी गिना जाएगा,
1: जी
0: ये जरूरी नहीं कि जब एनुमरेटर घरों में जाए जितने नॉर्मली रिसाइडिंग के लोग सबके सब अवेलेबल हो, ये
1: जी
0: पॉसिबल नहीं हो सकता सभी
1: जी
0: केसेस में।
1: जी
0: तो अगर कोई अगर टेम्पररी एब्सेंट है, चाहे वो काम के लिए बाहर गए हैं या तो पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं, कुछ दिनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ मैं, और या तो मैं भी रिश्तेदारों में चले गए हैं, ऐसे लोगों को भी जो टेम्पररी एब्सेंट है बट वो दे आर द नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर ऑफ दैट हाउस होल्ड, तो
1: जी
0: उनको भी आप इसमें गिने।
1: गिनेंगे उनको।
0: और कोई अगर गेस्ट है जो आपके घरों में मे भी कुछ दिन के लिए आए हैं
1: जी
0: और मे भी कुछ दिनों के बाद फिर से वापस चले जाएंगे अपने जहाँ से आए हैं, तो उनको आप एक्सक्लूड करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम दिल्ली में ये जानना चाह रहे हैं कि सेंसस के दौरान, और या तो आप कह सकते हैं जिस तारीख को ये डेटा पब्लिश होगी जो कि 1 मार्च 2027,
1: जी
0: तो उसी तारीख में दिल्ली में कितने लोग नॉर्मली रह रहे हैं, ताकि इस नंबर के हिसाब से जो भी पॉलिसी जो भी प्रोग्राम बननी है वो बनेगी।
1: जी आपने दिल्ली की बात की और जनगणना की जो
0: जी
1: तारीख है वो भी हमें बताई।
0: जी
1: मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमें कुछ और राज्यों के बारे में बताएं।
0: जी बिल्कुल, देखिए जैसे हाउस विस्टिंग ऑपरेशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमेशा ये समय सीमा दे रखा है कि अप्रैल से लेकर सितंबर, इन महीनों में कोई 30 दिन में
1: जी
0: आप हाउस विस्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दिल्ली के लिए जैसे एमसीडी एरियाज के लिए अभी ये 16 मई से लेके, मतलब जस्ट हमारे सेल्फ एनिमेशन खत्म होती है 15 मई, 1 मई से लेके 15 मई हमारे सेल्फ एनिमेशन होगी,
1: जी
0: 16 मई से लेके 14 जून तक हमारे एचएलओ होगी एमसीडी एरियाज में।
1: जी
0: तो इस तरीके का बाकी स्टेट भी, बाकी यूनियन टेरिटरी भी ऐसे अपना टाइमलाइन भी पहले से ही वो नोटिफाई कर रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपका पंजाब जैसे स्टेट में अभी 30 अप्रैल से लेके 14 मई ये उनका सेल्फ एनिमेशन का पीरियड है,
1: जी
0: और उसके बाद 15 मई से लेके 13 जून उनका एचएलओ का टाइम है। और आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे 7 मई से लेके 21 मई तक उनका सेल्फ एनिमरेशन है, और 22 मई से लेके 20 जून

0: का HLO का पीरियड है।
1: जी
0: हरियाणा का सेल्फ इमर्सन का जो पीरियड है वो 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल और 1 मई से लेके 30 मई उनका HLO का पीरियड है।
1: जी
0: तो ऐसे स्टेट अपने अपने सेल्फ इमर्सन और HLO का पीरियड को भी वो नोटिफाई करते हैं,
1: जी
0: तो पब्लिक को भी पता रहता है कि इसी टाइम में ही एनुमरेटर आएंगे, उसके बाद में भी कोई आएगा तभी उनको हमें जानकारी नहीं देनी है।
1: जी
0: तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियर है कि कौन आएगा और उनको अगर पहचानने के लिए हमें क्या क्या देखनी है, जैसे सर ने बताया उनका आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए
1: जी
0: और टाइमलाइन भी फिक्स है, क्या सवाल पूछा जाएगा वो भी फिक्स है,
1: जी
0: और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है चाहे कोई भी हालत में हो,
1: जी
0: आप जो कहेंगे वो उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियरली है, तो इसलिए पब्लिक को पूरे दिल से मतलब तहे दिल से
1: जी
0: उनको यहाँ पे सपोर्ट करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करनी चाहिए ताकि
1: जी
0: सेंसस सही ढंग से हो पाए।
2: आप चाहो तो दिल्ली और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी टाइमलाइन फिर से बता दीजिए
0: जी
2: एक
0: सर,
2: बार।
0: दिल्ली के लिए अभी जो MCD एरियाज जो है
1: जी
0: इसमें कुल 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं न्यू दिल्ली को छोड़ के, तो यहाँ पे अभी सेल्फ इनमर्सन जो होगी वो 1 मई से लेके 15 मई तक, और उसके बाद ही HLO होगी जिसका टाइमलाइन है 16 मई से लेके 14 जून,
1: जी
0: और राजस्थान का भी यही टाइमलाइन है, मतलब 1 मई से लेके 15 मई तक सेल्फ इनमरेशन होगी, 16 मई से लेके 14 जून तक HLO होगी। उत्तर प्रदेश का जो SC जो सेल्फ इनमरेशन का जो टाइमलाइन है वो 7 मई से लेके 21 मई एंड 22 मई से लेके 20 जून तक HLO होगी।
1: जी
0: हरियाणा का 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल सेल्फ एनिमर्सन होगी, 1 मई से लेके 30 मई तक HLO होगी। तो HLO हर जगह 30 दिन का ये फिक्स है ये
1: जी
0: टाइमलाइन।
2: HLO का मतलब है जहां पे एनुमरेटर घर घर जाएंगे।
0: जी
1: जी तो चलते चलते कौन सा गीत हम सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को? जितेंद्र जी
0: चलते चलते मेरे गीत याद रखना।
1: वाह, तो कार्यक्रम के समापन पर बहुत अच्छा सा गाना आपने चुना है, चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: तो अजय जी, चलते चलते हमारे माध्यम से आप सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं सभी लोगों से सहयोग की अपील करना चाहता हूँ।
0: जी, तो बहुत बड़ी चुनौती ये सामने है, बहुत बड़ा काम है, और आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी जो दोस्त हैं, श्रोता मित्र हैं, वो समझ गए होंगे कि कितने लंबी प्रक्रिया है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो हमें भी अपनी ओर से सहयोग करना है, और जैसा अजय जी ने कहा कि सहयोग की अपील जो है वो विभाग हम सब

0: से कर रहा है। सही जानकारी दें, समय से जानकारी दें, सतर्क भी रहें, लेकिन साथ ही जो परस्पर भरोसा है वो बनाकर रखें, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है जनगणना की, ये कहीं ना कहीं दीर्घकालीन उद्देश्य के साथ में है। इसके लक्ष्य यही है कि हमारा लाभ हो सके, हमें फायदा पहुंचाया जा सके। तो अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको कहती हूँ। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें जनगणना के विषय में बहुत विस्तार से ये जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आभार आप।
0: जी डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में ये पूरी प्रक्रिया आपने हमें समझाई, और अब हमें पता है कि कौन सी वेबसाइट है, क्या प्रक्रिया है, क्या तारीख है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो जानकारी आपने हमारी बढ़ाई है, उसके लिए आपके आभारी हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ, मैं नीलम मलकानिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई है।
0: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की।

जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश तेल का अधिक उत्पादन करेंगे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM Rainbow 101.9.
1: You're tuned to Akashwani Hyderabad, FM Rainbow 101.9, Rainbow Adds Colors to Your Life. News से पहले आप सुन रहे थे पोस्ट बॉक्स नंबर 111. अभी मैं आप सभी का वापस स्वागत करती हूँ नमस्ते हेलो आदाब पर. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं हाजिर हो जाऊंगी आप सभी के सामने.
2: మీ మార్కెట్ రిటర్న్స్ ను వేగంగా పెంచుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఎల్ఐసి ఇండెక్స్ ప్లస్ నెలకి కేవలం 2,500 రూపాయల ప్రీమియంతో ఫ్లెక్సీ స్మార్ట్ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 50లోని స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెడుతుంది. లేదా ఫ్లెక్సీ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 100 పై దృష్టి సారించి అభివృద్ధిని లక్ష్యంగా ఉంచుతుంది. ఎల్ఐసి, హర్ పల్ ఆప్కే సాథ్.
3: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान.
4: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण.
3: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
4: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
3: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध. डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें. न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
1: दिस इज स्टेशन ऑफ द नेशन आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9, रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ. तो संडे का दिन है और हफ्ते का पहला दिन है. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी भला होगा. तो इसीलिए आई थिंक यू नो संडे को ऐसे रेस्ट करते हैं सो दैट यू गैदर अप ऑल योर एनर्जी कि पूरा वीक अच्छे से गुजर जाए. और वैसे भी आज का इम्पोर्टेंस ये भी है कि आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है. तो लोग ये पूछते हैं, मैंने कहीं लोगों को हमेशा ये बोलते और यू नो क्रिटिसाइज करते हुए सुना कि डू यू एक्चुअली नीड अ पर्टिकुलर डे टू यू नो गिव वैल्यू और गिव वर्थ टू दैट पर्टिकुलर डे, जस्ट लाइक लाफ्टर. एब्सोल्युटली करेक्ट, देने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंस, वो अवेयरनेस के लिए उस चीज़ की वैल्यू या अहमियत कि ऐसा एक दिन डेडिकेटेड है, इसका मतलब इसका हमारे जीवन के साथ कितना ज़्यादा महत्व है, ये दिखाने के लिए ऐसे डेडिकेशंस होते हैं टू जस्ट बिल्ड अप द अवेयरनेस. थिंक अबाउट इट कि ज़रूरी है या नहीं, ये आर्ग्यूमेंट तो चलता रहेगा. फिर भी मैं ये कहती हूँ कि हम सबको जीवन में मस्ती करने के लिए या जीवन को सेलिब्रेट करने के लिए एक एक्सक्यूज तो बनता ही है, है नहीं दोस्तों? सो कमिंग अप बिल विदर्स विद एंड नो सनशाइन. एज यू कीप एंजॉइंग दैट, कीप लिसनिंग टू दिस शो.

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: LIC का बीमा

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

0: సిరి పెయింటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, హిమాయత్ నగర్, జూబ్లీ హిల్స్. ఈ వేసవి సెలవుల్లో పెయింటింగ్ లో ఆసక్తి ఉన్న వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వబడును. ఫోన్ నంబర్ 9849419642.
1: You are tuned to the Station of the Nation, Akashvani, Hyderabad FM Rainbow 101.9. Rainbow adds colors to your life. Dosto, hum sui ki us mod pe pahunch chuke hain jiska aap sabko besabri se intezar rehta hai, yani ke studio clock mein time ho chuka hai 12:59 and 44 seconds. Bas kuch hi second mein it's going to be 1 and it's going to be Hello Rainbow. क्या बोलते हैं दोस्तों, हेलो रेनबो. आप सबको पता ही है, आपको ये मौका मिलता है कि आप किसी एक टॉपिक पर मेरे साथ थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू कर सके, आप अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. तो प्रोग्राम तो हेलो रेनबो मैंने बता चुका है, और आप सबको ये भी पता है, फ़ोन नंबर्स फिर भी याद दिला दूं कि आपको कॉल करना है ऑन 0402323 0030 0402323 4821. एक और नंबर है 0402970475. तो एवरीथिंग इज सेट, लेकिन मैंने आप लोगों को टॉपिक ही नहीं बताया है, तो फिर आप किस बात पे बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लाफ्टर पर. जी हाँ दोस्तों, आज है वर्ल्ड लाफ्टर डे. तो मैं बस आपसे ये चाहती हूँ कि थोड़ी देर, ये एक घंटा जो है हेलो रेनबो का, हम सब एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे अच्छे जोक्स शेयर करें. तो कभी ऐसा हो सकता है, एज द सेइंग गोज, ईच टू हिज ओन. थोड़े लोगों को डार्क ह्यूमर पसंद आता है, थोड़े लोगों को प्रैंक्स पसंद आते हैं, थोड़े लोगों को बस छोटी सी बहुत ही सिंपल सी चुटकुलों पर हंसी आ जाती है, थोड़े लोगों को हाथी और चींटी के जोक्स पर हंसी आ जाते हैं, और थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं जो पीजेस पे हंसते हैं. तो हंसी आने के बहुत सारे तरीके हैं, बट द फाइनल थिंग इज द बॉटम लाइन, ऐसे बोलते हैं, ये है इंटेंशन, ये है कि हम सब एक दूसरे को आज हंसाए. तो आप सबके जहन पे, टाइम हमारे पास कम है, तो याद रखिएगा कि कहानियां मत सुनाइए, छोटे छोटे जोक्स जो चंद सेकंडों में आप हमें सुना सकते हैं और हमारे लिसनर्स भी सुने और उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाए. तो ये था आज का टॉपिक. एक गाना गाने के बाद मैं आप सबसे जरूर बात करूंगी, तो अच्छे अच्छे जोक्स के साथ तैयार रहिएगा.

स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये गाना राधा, श्रेया घोषाल एंड उदित नारायण की आवाज में अभी आपने सुना ओनली ऑन आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। आज के टॉपिक के चलते, वर्ल्ड लाफ्टर डे के चलते, मैंने आप लोगों को बस ये बोला है कि आपको मुझे कॉल करके बस चुटकी ले सुनाने हैं और हम सबको हंसाना है। दिखता है किसका जोक सबसे ज्यादा सबको हंसाता है। वैसे कहते हैं ना कि लाफ्टर इज अ पावरफुल फ्री एंड नेचुरल मेडिसिन दैट एनहांसेस आवर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ एंड इज ऑल्सो ऑफन सेड दैट अ डे विदाउट लाफ्टर इज एक्चुअली अ डे वेस्टेड। जैसे चार्ली चैपलिन कहते थे कि अ गुड लाफ एक्चुअली हील्स अ लॉट ऑफ वूंड्स। कभी कभी बच्चों की मासूम भरी सवाल, हम चाहे जितने भी स्ट्रेस में हो, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम के लिए, हमें सिर्फ वो टाइम के लिए नहीं, एक्चुअली जब जब हम याद करते हैं, आप सोच के देखिए कि आप अगर 50 साल के भी हो गए और आप आपके कजिन्स के बीच बैठे हो तो वही बचपन की बातें बात करके फिर से मुस्कुराते रहते हैं। इट्स ऑल बिकॉज देर इज सो मच ऑफ इनोसेंस इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो वो वाले जो हंसी है जो फोर्सफुल नहीं है बट जो दिल से आती है एंड हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, वो हमेशा हमें बरकरार रखनी चाहिए, राइट? सो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है।

0: उनसे डेफिनेटली बात करते हैं, बट देखते हैं कि वो हमें क्या बोलेंगे। हेलो,
1: हेलो दीपा राजगारु, शुभ मध्याह्नం.
0: గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్, ఎలా ఉన్నారు?
1: చాలా బాగున్నాను మేడం, మీరు కూడా చాలా బాగుంటారు అనుకుంటాను.
0: థ్యాంక్ యూ సార్. సో
1: ధన్యవాదాలు.
0: తొందరగా ఒక
1: పేరు రమేష్
0: జోక్.
1: మాట్లాడుతున్నాను మేడం. అయితే జోక్లకు వస్తే మేడం, ఇంటి ముందు రెండు గాడిదలు అరుస్తుంటాయి మేడం,
0: ఓకే,
1: గాడిదలు
0: గదే గదే.
1: అరుస్తుంటాయి. అంటే భర్త అంటాడు, ఏమేమి చుట్టా పెట్టారు చూసి చూసిరావు అని చెప్తాడు అనమాట. అంటే
0: ఓకే,
1: భార్య అంటుంది, ఏ మామయ్య అత్తయ్య బాగున్నారా, లోపల రాని లోపల రాని బోల్తే పోతా.
0: అచ్చా, సమజ్ గయ్,
1: అచ్చా
0: కాన్
1: ఇంకోటి,
0: కిస్కున్నా.
1: ఏంటి మామ పొద్దున్న నుంచి తెగ సోకు చేస్తున్న అద్దం ముందు నోడు, ఏంటి వ్యవహారం వెళ్తే పోతా. ఏం లేదు లచ్చి, నిన్న మందు కోసం అని డాక్టర్ గారికి వెళ్తే ఫోటో తీయాలని చెప్పారే, అందుకోసమే బాగా నిన్న రెడీ అవుతున్నాను అని కోరుతాను
0: ఓకే,
1: మేడం. ఏ గానాదోనా మేడం,
0: కాన్
1: డాన్స్
0: సా,
1: టీచర్ మే ఏ పాను బనారస్ వాళ్ళ గానా గాను.
0: अब मैं कोशिश जरूर करूंगी. आपने पिछली बार भी पूछा था, आज कोशिश
1: अच्छा
0: जरूर करूंगी. थैंक यू सर,
1: धन्यवाद
0: आपने
1: मैडम,
0: अच्छे अच्छे
1: धन्यवाद.
0: जोक
1: वेलकम.
0: सुनाए. टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. शॉर्ट ब्रेक के बाद ये जोक्स का सिलसिला और गानों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा.
2: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు అందిస్తున్నారు అద్భుతమైన 444 రోజుల డిపాజిట్ పథకం.
3: ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో వృద్ధులకు 7.10% మరియు వయోవృద్ధులకు అదనంగా 0.25% వడ్డీ రేటు.
2: మరిన్ని వివరాలకు మీ దగ్గరలో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి.
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद, एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइव रंगीन. जोक्स के सिलसिलों को जारी रखते हुए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो,
4: हरिओम.
0: हरिओम, अपना परिचय दीजिए.
4: मैं विलास पेनुरकर आके नगर से बोल रहा हूँ
0: जी. तो आप कौन सा चुटकुला सुनाने वाले हैं?
4: हाँ जी, दो मित्र हो, दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति का नाम महेंद्र कुमार और दूसरा गोपाल.
0: ओके,
4: ये दोनों भी सवेरे उद्यान में घूमने के लिए जाते हैं. तो जाते जाते दोनों में मैत्री हो जाती है.
0: ओके,
4: तो एक दिन महेंद्र कुमार जी अपने मित्र से गोपाल से कहते हैं कि गोपाल जी आप हमारे घर के लिए साथ में चाय पियेंगे.
0: ओके,
4: तो महेंद्र कुमार जी गोपाल जी को अपने घर लेकर जाते हैं. जाते ही बोलते हैं अपनी पत्नी से, डार्लिंग गोपाल जी आए हैं उनके लिए पानी और चाय लेकर आओ.
0: ओके,
4: तो वो पत्नी बेचारी अपना पानी लेकर आती है, चाय लेकर आती है, दोनों भी बैठ करके चाय पीते हैं, गपशप हो जाती है. और गोपाल जी अब घर जाने के लिए, लौटने के लिए बाहर आ जाते हैं, साथ साथ महेंद्र कुमार जी भी उनको छोड़ने के लिए बाहर आते हैं. गोपाल जी बोलते हैं कि महेंद्र कुमार जी ये बताइए कि आप अपने पत्नी को, इतनी आपकी आयु हो गई है 70-75 वर्षों की, तो पत्नी को अभी भी आप डार्लिंग कहकर बुलाते हो, क्या बात है? तो महेंद्र कुमार जी बोलते हैं, देखो गोपाल जी आपने ये प्रश्न मुझे बाहर आने के बाद में पूछा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से मैं अपने पत्नी का नाम भूल गया हूँ.
0: वेरी नाइस, बहुत खूब. ये तो सोचा ही नहीं था, ट्विस्ट बहुत अच्छा है. कब से क्या सोच रहे थे कि क्या हो सकता है इसमें, जो क्या हो सकता है, चाय भी पी लिए सब, बट द ट्विस्ट इज रियली गुड. थैंक यू सो मच.
4: और एक सुनाता हूँ
0: जी, जल्दी प्लीज.
4: एक ही मिनट का है.
0: हाँ.
4: एक युवक होता है जो बीए तक पढ़ाई उसकी हो जाती है और
0: हाँ.
4: उसके पश्चात वो नौकरी के लिए घूमता रहता है.
0: ओके,
4: तो बहुत समय तक घूमने के पश्चात भी उसको नौकरी नहीं मिलती. उसके एक मित्र उसको सलाह देते हैं कि यहाँ पर एक बाबा बैठते हैं, आप उनसे जाकर संपर्क करो, वो आपके लिए कुछ करेंगे.
0: ओके,
4: तो ये व्यक्ति उस बाबा के पास में चले जाते हैं, बोलते हैं बाबा जी मैंने बीए तक मेरी पढ़ाई हुई है और पिछले 6 महीने से घूम रहा हूँ लेकिन मुझे नौकरी मिलती नहीं है, आप कृपया कुछ कीजिए मेरे लिए. वो तो बाबा बोलते हैं, देखो भैया आपको एक सलाह देता हूँ मैं, आपने बीए पास कर लिया है और एक बार बीए की परीक्षा दे दीजिए.
0: ओके,
4: तो वो युवक बोलता है, पंडित जी देखो बड़े मुश्किल से बीए पास किया है, आप और एक बार परीक्षा देने के लिए कहते हो, तो बोले आप इधर आ जाओ, ये कागज है, ये पेन है. बाबा जी क्या करते हैं, पूछते हैं आपने क्या पढ़ा है, बीए. ये बीए, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, और एक बार बीए पढ़ो तो क्या होगा, बीए बीए.
0: हाँ.
4: क्या होगा, बीए बीए
0: बाबा.
4: तो आप भी बाबा बन जाओ.
0: ओके.

0: नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा।
1: डेफिनेटली। चलिए थैंक यू सर,
0: धन्यवाद।
1: पहले वाला जोक काफी अच्छा था लेकिन।
0: अच्छा
1: एक और कॉलर से जान लेते हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: मंगा वास्ते सिकंदर वास्ते कैसा है मैडम?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो मंगा जी, आप कौन सा जोक सुनाएंगे?
2: जस्ट लॉफिंग इज बेस्ट मेड्स इन फास्ट
1: जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।
2: बिकॉज कौन सा टाइम पे हंसना वही टाइम पे हंसना
1: हाँ,
2: और
1: नहीं कभी कभी क्या
2: इसका
1: होता है, मेरे जैसे लोग मुझे याद आके आके भी हंसते हैं, तो सीरियस सिचुएशन में कुछ याद आ
2: करेक्ट
1: जाता है और हंसते हैं।
2: करेक्ट। हस्बैंड वाइफ रहते हैं
1: हाँ
2: दोनों, लड़ाई डेली,
1: ओके। हाँ
2: तो हस्बैंड सुसाइड करने को रेडी हो गया। क्या
1: अच्छा,
2: करते हैं?
1: हाँ
2: फैन को हैंग करने के लिए एक साड़ी, वाइफ का साड़ी लेके हैंग कर ले।
1: हाँ
2: वाइफ आते किचन से बाहर आके,
1: हाँ
2: अरे अरे अरे, अरे बोले तो सब लोग क्या सोचते, आप क्या सोचते, नको बोलते सोचते ना।
1: हाँ
2: बट ट्विस्ट इज दे, अयो आपको नया साड़ी है, मैं एक बार भी नहीं पहने, लेकिन
1: अच्छा,
2: पुराना साड़ी ले लो बोले। बोले
1: ये
2: तो
1: ट्विस्ट
2: लेडीज
1: अच्छा
2: का,
1: है।
2: लेडीज का तो साड़ी
1: नया
2: बहुत
1: साड़ी,
2: सुंदर।
1: हाँ, कोई
2: हाँ
1: रिपीट ही नहीं
2: कभी
1: करना है, नहीं फंक्शन में भी रिपीट नहीं करना
2: रिपीट नहीं करना। देखो हस्बैंड को सुसाइड करने के भी टाइम पे उन्होंने साड़ी के ऊपर सोच रहे,
1: है। हाँ, उसका
2: बोले तो
1: नया
2: नया
1: साड़ी
2: साड़ी है, वेस्ट
1: है।
2: होता, आप पुराना साड़ी ले लो बोले।
1: वेरी
2: जोक
1: नाइस, थैंक यू
2: जोक।
1: मंगा जी, अच्छा जोक था।
2: थैंक यू थैंक यू।
1: थैंक यू थैंक यू। सो आगे ये जोक्स का सिलसिला हम जारी जरूर रखेंगे। एक खूबसूरत सा गाना अभी,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। तो हम आज लाफ्टर डे के आधारित पर आज एक दूसरे को जोक सुना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हंसाए। आई एम श्योर एटलीस्ट किसी ना किसी को तो हंसी जरूर आ रही होगी, एटलीस्ट हमारे जोक्स पे नहीं बट वो कुछ अपने अपने जोक्स पर भी यू नो याद करते हुए हंस जरूर रहे होंगे। वैसे मुझे एक और जोक याद आया, मैं शेयर करना चाहूंगी। श्रीजा आप सुना चाहोगे? एक छोटे सा जोक है। देर वॉज इज ड्रंकर्ड, ओके, ही ड्रैंक फुल्ली एंड समहाउ ही स्लिप अयर्ड, टेरेस మీద ఉన్నాడు, స్లిప్ అయ్యాడు, జారి కింద పడ్డాడు. అయితే వెన్ హీ ల్యాండెడ్ డౌన్, ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ జనాలు చూస్తారు కదా, సో పీపుల్ సా అండ్ దే కేమ్, క్యా హువా క్యా హువా, सो ही इमिडिएटली आंसर्स, पता नहीं मैं भी अभी अभी नीचे आया हूँ. सो दैट्स दैट ड्रंकर्ड्स जोक. सो लेट्स सी इफ देर आर एनी मोर जोक्स, बट आई विल टॉक टू यू वंस आई एम डन विद दिस पॉप.

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम नंबर 101.9 रेनबो के साथ लाइव रंगीन। तो श्रीजा बताइए आप कौन सा जोक सुनाएंगे?
1: यस, व्हेन यू वर स्पीकिंग अबाउट द ड्रंकर्ड, इवन आई रिकलेक्टेड सम जोक रिगार्डिंग अ ड्रंकर्ड।
0: ओके,
1: देयर वाज अ पर्सन, ही ड्रंक फुली एंड ही केम होम। ही केम होम एंड टू कवर दैट ही टुक आउट हिज लैपटॉप एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट।
0: Okay.
1: Suddenly the wife came in.
0: Okay.
1: And she asked, "Ki, what happened? Did you drink?" So he was like, "No, I did not drink. I just came from the office. I'm very busy. I'm doing my work.
0: Huh.
1: Don't disturb me," bolke he told.
0: Huh.
1: But then the lady scolded him.
0: Okay.
1: "You stupid. You are saying you're working on the laptop, but it is the suitcase. You've taken out your suitcase and you're working, huh? So definitely you are drunk. Why did you drink?" Bolke she started fighting with him.
0: Okay, very, I mean, some people might definitely relate to it. But that's a nice joke. Thank you, Shrija. Let's see our listeners. There are many callers lined up to speak to us and share the jokes. Let's see who the next caller is. Hello. Hello.
2: Hello, good afternoon. Adab, Deepa ji.
0: Adab, adab. To aap kaun sa chutkula sunayenge?
2: Ji, teen dost rehte hain.
0: Aha.
2: और तो एक होटल में बैठ के चाय का मजा लेते हैं
0: जी।
2: तो बातों में वो एक दूसरे को कहते, अरे इतनी गर्म चाय, अरे पी लिया तू, इतनी जल्दी पी लिया। वो उसको बोलता, अरे तू पी लिया। वो बोलता, फिर तीनों अपनी बात शेयर करते, अरे ये तो कुछ भी गर्म नहीं है, मेरे दादाजी तो इतनी गर्म चाय पीते, इतनी गर्म पीते। बोले जब जैसे ही चाय का कप सामने आता है, एक ही घूट में पूरी चाय गटक लेते हैं। तो दूसरा दोस्त कहता है, अरे तेरे दादा तो कुछ भी नहीं, मेरे दादाजी इससे भी गर्म पीते। बोले भाई तेरे दादा कैसे इससे गर्म पीते? बोले मेरे दादाजी जो है तो चाय का भगोना चूल्हे पे से उतारे की सीधा मुंह को लगा लेते और गटक लेते। बोले
0: अच्छा, एक दूसरे को नीचा
2: दिखा। तो तीसरा दोस्त बोलता, अरे कुछ भी नहीं है। बोले मेरे दादाजी इससे भी गर्म पीते। वो बोले, अरे भाई अब इससे गर्म कौन सी होती? बोले और क्या करते? तो बोले मेरे दादाजी दूध, शक्कर, पत्ती, पानी सब पेट में डाल लेते। बोले और गैस के चूल्हे पे ही बैठ जाते।
0: अच्छा, वो डायरेक्ट बैठ जाते। ओके, थैंक
2: यू। मटेरियल पेट में डाल लेते, बोले मुंह में से, और गैस के चूल्हे पे बैठ जाते।
0: अच्छा, चलिए, थैंक यू, शुक्रिया।
2: शुक्रिया दीपा जी। ओके,
0: हेलो हेलो
3: हेलो
0: हेलो,
3: दिस इज गीता स्पीकिंग फ्रॉम साकेत्रा।
0: गीता जी,
3: This topic is very nice.
0: Thank you so much. So, which
3: happiness is all about smiling and
0: exactly.
3: making others smile.
0: Yes. You know what, Geeta ji, I believe in this.

0: concept that if you cannot make someone happy, at least be sure that you are not the reason for their tears. Aye. So which joke would you like to share with us today?
1: One gentleman went to doctor to check up.
0: Uh-huh.
1: So he asked, what is the problem? So
0: okay.
1: He asked problem.
0: Mm-hmm.
1: So he said, you please tell your family, family ka kuch disease rahte na?
0: Ji ji, hereditary.
1: तो ये आदमी क्या बोलते हैं, हमारे घर में तो चूल्हा क्या स्टोव है, पंप स्टोव है, लकड़ी का स्टोव है, मगर गैस स्टोव तो नहीं है.
0: अच्छा.
1: तो डॉक्टर बोलते हैं, हम उसके बारे में नहीं पूछ रहे, आपके फैमिली हिस्ट्री बोलो, किसको गैस है, क्या गैस की प्रॉब्लम गैस. तो ये आदमी ऐसा बोल देते.
0: समझ गई. He thinks about
1: समझ
0: the.
1: गए.
0: हाँ, समझ गई
1: एंड
0: समझ.
1: अदर वन ही वन जेंटलमैन गो टू डेंटिस्ट. व्हेन ही सिट्स ऑन द डेंटल चेयर ही विल बी स्क्रीमिंग लाउडली. द डॉक्टर सेज, विदाउट टेस्टिंग आई एम जस्ट आस्किंग यू टू ओपन योर माउथ, व्हाई आर यू स्टार्टेड स्क्रीमिंग. सो ही सेज, यू आर स्टैम्पिंग माई 2 feet लाइक एनी थिंग डॉक्टर बोल के बोले.
0: दिस वन इज गुड. थैंक यू
1: वन
0: गीता जी.
1: सॉन्ग मैडम आई वॉन्ट, किसी की मुस्कुराहट तोड़ पे हो निसार, तो आवारा का गाना है.
0: ओके, कोशिश जरूर
1: प्लीज
0: करती हूँ. थैंक यू गीता जी, थैंक यू सो
1: बाय.
0: मच. हेलो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है. तो एक खूबसूरत सा गाना.

0: भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीनॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: You're tuned to the station of the nation, Akashwani Hyderabad FM Rainbow 101.9. Rainbow adds colors to your life. Baton ke silsile, in fact, aaj chutkulon ke silsile ko jari rakhte hue, hamare agle caller ko lete hain. Hello.
3: Good afternoon, madam.
2: Very good afternoon. Kaun bol rahe hain?
3: मैं जबीन,
2: कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी हूँ।
2: तो कौन सा
3: चुटकुला? मैडम,
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग। तो आप बताइए।
3: एक बच्चे को बचाने को तालाब में कूदते एक जने, बच्चे को ऊपर ला लेते।
2: ओके।
3: सब जने तारीफ करते, रे रे बहुत अच्छा काम करे। बोले तो सब जान दो, धक्का कौन दिए मेरे को। और एक छोटा है, पानी भरते रहते।
2: ओके।
3: पानी की जगह लड़ाया होते हर जगह। तो तेरे को हंदा मिलो, तेरे को वैसो लंगड़ा मिलो, बोल तो ऐसा बोल लेते रहते। लगा एक दूसरे को एक लंगड़ा हंडा वहां से चाहते रहता।
2: Okay.
3: तो लगा उन दोनों बोलते हम ठहरना जाना बोलते।
2: पहले वाला जोक अच्छा था, लेकिन कौन धक्का दिया। शुक्रिया मैं जबीन जी।
3: थैंक यू।
2: हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिएगा। हेलो, ये भी डिस्कनेक्ट हुआ। तो जब तक वो वापस कनेक्ट करते, मैं आपको एक सुनाती हूँ। तो ये दो दोस्त चिंटू और मिंटू बात कर रहे थे। तो चिंटू मिंटू को बोलता है, मिंटू अगर ऐसा एक मशीन बने या ऐसा एक विश कोई पूरा करे, मैं नया दूसरा ब्रेन लगवाना चाहते हूँ क्योंकि मेरा दिमाग से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। तो मिंटू पूछता है, तो किसका ब्रेन लगाना चाहोगे? मैं वो तो चिंटू बोलता है, मैं तुम्हारा ब्रेन लगाऊंगा। तो मिंटू बहुत खुश हो जाता है, मतलब तुम मानते हो कि मेरे पास जीनियस वाला दिमाग है। तो चिंटू बोलता है, नहीं, इट्स नॉट बिकॉज जीनियस, आई वॉन्ट अ ब्रेन विच इज नॉट यूज्ड। सो ही उसका एक अभी तक यूज नहीं किया हुआ सो ब्रेन है, एंड दैट्स व्हाई ही वांट्स इट। देखते हैं अभी अगले कॉलर क्या कौन सा जोक सुनाते हैं। किसी को हंसी आई नहीं कि पता नहीं मेरे जोक पर। हेलो
4: हेलो, दीपा राज गारु
2: नमस्कारम।
4: नमस्कारम, मल्ली इंको कोत्त जोक ज्ञापकम वच्चिंदि।
2: अरे चप्पन।

0: నేను ఎం శ్రీనివాస్, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, హైదరాబాద్. పిల్లల పరంగా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు 1098కు కాల్ చేయండి. 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్.
1: आप सुन रहे हैं द स्टेशन ऑफ द नेशन, आकाशवाणी हैदराबाद, एफएम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ रंगीन. तो कॉल्स तो बहुत लिए हैं, जोक्स के ऊपर था आज का टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक से हटकर मुझे किसी ने मैसेज भेजा है तो मैं उनका मैसेज आपको पढ़कर सुना देती हूँ. अश्विन जी कोठी कुशाल मार्केट से लिखते हैं, बहरे बन जाओ, बोलते हैं बहरे बन जाओ अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो, क्योंकि राह में आपको सलाहकार नहीं मनोबल गिराने वाले ही मिलेंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट अश्विन जी, अगर आगे बढ़ना है तो यू शुड नो योर गोल और उनको अपने साथ रखना है जो आपको आगे बढ़ने देंगे, हु मोटिवेट्स यू टू यू नो कीप मूविंग अहेड इन स्पाइट ऑफ मेनी फ्लॉज. सो थैंक यू अश्विन जी, आपने ये प्यारा सा मैसेज भेजा, हालांकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. वैसे दोस्तों बता दूं, आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है, तो सिर्फ आज के दिन नहीं बट हर दिन मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें. आप भी हंसते रहिए, हंसाते रहिएगा, चाहे जोक्स जैसे भी हो, यू नो पुअर जोक्स हो, या जैसे आई वॉज टॉकिंग अबाउट ईच टू हिज ओन, सम लव डार्क ह्यूमर, सम लव प्रैंकिंग. अभी जैसे किसी ने हमारे ऊपर ही, हमारे आजी श्रीजा के ऊपर ही प्रैंक किया है, तो किसी की हंसी यू नो का रीज़न क्या है नहीं बता सकते, किस पर हमें हंसी आए वो भी नहीं बता सकते, बट जैसे भी हो हमेशा हंसते रहिएगा, हंसने के कारण ढूंढिएगा, क्योंकि रुलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, रोने के कारण बहुत मिल जाएंगे, हंसने के कारण हमें ढूंढना पड़ता है, एंड इट्स अ चॉइस. सो लिव हैप्पी, कीप स्माइलिंग, ये मेरा साइनिंग ऑफ है आप सभी से. जैसे आपको पता है, कोई चीज की शुरुआत होगी तो अंत भी होगा. सो मेरा आप सबसे विदा लेने का टाइम आ चुका है. स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो चुका है 1:57:48 और हमारे अगले आरजे आरजे अनुषा आप सबको हेलो बोलने के लिए इस तड़पती हुई धूप में पहुंच चुकी है, एंड शी इज फुल एक्साइटेड टू से हाय. डू यू वांट टू से हाय टू एवरीबॉडी?
2: हाय.
1: सी, देखा मैंने बोला था ना, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट भरी हुई हाय आप सबको. सो वेट फॉर हर, कहीं मत जाइएगा, यू आर स्टिल ट्यून टू आकाशवाणी हैदराबाद, एफएम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ रंगीन.

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीनॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
0: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
0: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM Rainbow 101.9

0: गया, अडियोस अमिगो।
1: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर सामाइन। इस वक्त स्टूडियो घड़ी में रात के 9:30 और 23 सेकेंड्स हो रहे हैं और आप पेश खिदमत हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। उर्दू प्रोग्राम नए रंग की बज़ में सामाइन का दिली खैर मकदम है, और हम आप तमाम की खिदमत में तस्लीमात पेश करते हैं। और सामाइन, आज की इस बज़म को हमने सजाया है हर्फ ताबिंदा से। तहरीरों पेशकश होगी फहमिदा फहमोश की, और बुलाए नहीं भूलते के तहत आप फिल्मी नगमे समाप्त कर सकेंगे, और बज़्म के आखिर में आप सुन सकेंगे पयाम शब। पेशकश होगी सैयद नदीम अख्तर जैदी की। तो सामिन, बज़्म का हम आगाज़ करते हैं हर्फ ताबिंदा से, जिसे पेश कर रही हैं फहमिदा फहमोश। आइए सुने।
1: वक्त एक ऐसी बेबहा दौलत है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आती। ये जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है, और जो लोग

0: साथ ही जिंदगी का सफर भी आगे बढ़ता रहता है। एक कामयाब इंसान वही है जो अपने वक्त को बेमकसद कामों में जाए करने की बजाय उसे बामकसद सरगर्मियों में सर्फ करता है। तालिबे इल्मों के लिए वक्त की पाबंदी खास तौर पर अहमियत रखती है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब वो अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं। वक्त की कदर का एहसास वही शख्स कर सकता है जो जानता हो कि हर गुजरता लम्हा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा कम कर रहा है। हमें हर दिन को ऐसे समझना चाहिए जैसे ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। वक्त की कदर करने से ना सिर्फ फर्द को फायदा होता है बल्कि मुआशरे में भी मुस्बित तब्दीलियां आती है। जब हम वक्त की कदर करते हैं तो हम अपने हर काम को एक मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, जिससे नज्म व जब्त पैदा होता है। वक्त एक कीमती और अनमोल सरमाया है जिसे जाया करना सबसे बड़ी हिमाकत है। जो शख्स वक्त की कदर करना जानता है वही जिंदगी में कामयाब होता है और अपनी मंजिल को हासिल करता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने वक्त की कदर करें और इसे इस तरह इस्तेमाल करें कि वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का जरिया बने। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके।
1: बहुत खूब। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो दोबारा दोबारा हमें वक्त दे सके। यकीनन सामने जब हम एयर आते हैं और जब प्रोग्राम पेश करते हैं, तो ये जो सेकंड्स का भी फ़र्क होता है, वो जो वक्त होता है, हमें इस बात की अहमियत जताता है। जब ये जो निडल होती है घड़ी की, जब चल पड़ती है, तो सेकंड्स का भी हमें हिसाब देना होता है। तो मिनट्स तो दूर की बात है, तो सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि भी सेकंड्स भी कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। तो वक्त की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी हरफ़ ताबिंदा में फहमिदा फहमोश। आप सामाई भुलाए नहीं भूलते के तहत हम सुनते हैं फिल्मी नगमे। तो अर्ज़ करती हूँ, एक प्यारी सी गज़ल है और इस गज़ल का हर एक शेर अपने में बड़ा मफहूम लिए हुआ है। शेर का मतलब, गज़ल का मतलब कुछ इस तरह से है कि किसी गज़ल का कोई शेर मोतबर होगा, किसी गज़ल का कोई शेर मोतबर होगा, कहीं तो कोई हमारा भी मुंतज़िर होगा, कहीं तो कोई हमारा भी मुंतज़िर होगा। और क्योंकि बहुत ही मायनेफुल है, काफ़ी मतलब इसमें छुपा हुआ है, तो फिर से मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगी कि किसी गज़ल का कोई शेर मोतबर होगा, कहीं तो कोई हमारा भी मुंतज़िर होगा, जो नाज़ अपने मुकद्दर पे करता रहता था, जो नाज़ अपने मुकद्दर पर करता रहता था, उसे खबर ही कहाँ थी कि दर बदर होगा, उसे खबर ही कहाँ थी कि वो दर बदर होगा। हाँ, किसे क्या खबर होती है, इंसान है, बहुत कुछ सोचता है, समझता है और बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन होता वही है जो होना है। और तीसरा शेर कुछ इस तरह से है कि मैं वो हूं जिसकी खिजाओं में जिंदगी गुजारी, मैं वो हूं जिसकी खिजाओं में जिंदगी गुजारी, किसी बहार का मुझ पर क्या असर होगा, किसी बहार का मुझ पर क्या असर होगा, ये हौसला ही नहीं दर्द में बयान करूं, ये हौसला ही नहीं दर्द मैं बयान करूं, ये हौसला ही नहीं दर्द मैं बयान करूं, मेरा फसाना मेरी तरह मुख्तसर होगा, मेरा फसाना मेरी तरह मुख्तसर होगा। गजल का मख्ता कुछ इस तरह से है, न जाने अगला सफर किसके साथ लिखा है, न जाने अगला सफ़र किसके साथ लिखा है, न जाने कौन तेरा हम सफ़र होगा, न जाने कौन तेरा हम सफर हो।

नगमा यकीनन आप सभी को पसंद आया होगा। और अब बात करते हैं, और वैसे आपको मैं बता दूं कि आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग, और इस वक्त स्टूडियो घड़ी में वक्त हुआ है 9:43 और 20 सेकेंड्स, और बज्म सजी है यकीनन नायरंग की, तो और उसमें आप सुन रहे हैं भुलाए नहीं भूलते के तहत फिल्मी नगमे। चलिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानते भी हैं फिर भूल जाते हैं। वक्त ही कुछ ऐसा चल रहा है, मसरूफियात इतनी बढ़ चुकी हैं हमारी। आपने सुना होगा, ज़्यादातर लोग सांप का नाम सुनते ही डर जाते हैं, सुना है ना आप? कि सांप यकीनन जो खतरनाक मोजी जानवर होते हैं, तो डर तो लगेगा ही, लेकिन बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं जो डरते नहीं हैं, और वो जो डरते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यही सुनिए गौर से कि ज़्यादातर लोग सांप का नाम सुनते ही डर जाते हैं। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हर सांप जहरीला होता है और देखते ही हमला कर देता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। ज़्यादातर सांप इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं और तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें खुद खतरा महसूस ना हो। कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जो हमारे कुदरती माहौल को कंट्रोल करने में एक खामोश मगर अहम किरदार अदा करते हैं। सांप सिर्फ खतरनाक मखलूक नहीं बल्कि माहौल का एक ज़रूरी तवज़ुन है। उनकी खूबसूरती और तनु किसी भी इंसानी अकल को दंग कर देने के लिए काफ़ी है। यकीनन सांप जो अनगिनत है, कई किस्म के सांप हैं, तो उनमें ज़्यादातर खतरनाक हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो खतरनाक नहीं होते, और वो उसी वक्त इंसान को डसते हैं जब वो महसूस करते हैं कि इंसान उस पर हमला करने वाला है। तो सांप के कई अकसाम हैं, जानते हैं आप? तो अब आपने समझा कि सांप में यानी हैरत कर देने वाले चीज़ें उसमें मौजूद है। जब इंसान उसे बगौर देखता है, मुताला करता है, उसका जांच पड़ताल करने की कोशिश करता है, साइंटिस्ट या मुहक्किकीन तहकीक करने वाले तो हैरान रह जाते हैं। आइए सुनते हैं ये नगमा।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर सामाईना आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नया रंग, और बस मसजी है भुलाए नहीं भूलते के तहत फिल्मी नगमों से। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, वो जिनकी उम्र ज़्यादा हो, वो जिनकी उम्र ज़्यादा हो, और वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। क्योंकि वक्त इंसान को वो सबक सिखा देता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। दर्द जब खामोशी से दिल में उतरता है तो लफ्ज़ कम और समझ

ज़्यादा हो जाती है। और फिर इंसान हर बात पर नहीं, सिर्फ सही बात पर बोलना सीख जाता है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर सामायण आप सुन रहे हैं। उर्दू प्रोग्राम नए रंग बज़्म सजी है भुलाए नहीं भूलते के तहत फिल्मी नगमों की। अर्ज किया है, मेरी तकमील में शामिल हैं कुछ तेरे हिस्से, मेरी तकमील में शामिल हैं कुछ तेरे हिस्से, हम अगर तुझसे ना मिलते तो अधूरे रहते, हम तुझसे ना मिलते तो अधूरे रहते हैं।

अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, जख्म खिलते हैं अजियत नहीं होती मुझको। अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ, अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ, अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको, अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको। ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलूँ तो नदामत नहीं होती मुझको, झूठ बोलूँ तो नदामत नहीं होती मुझको। है अमानत में खयानत सौ किसी की खातिर, है अमानत में खयानत सौ किसी की खातिर।

खातिर कोई मरता है तो हैरत नहीं होती मुझको, कोई मरता है तो हैरत नहीं होती मुझको। तू जो बदले तेरी तस्वीर बदल जाती है, तू जो बदले तेरी तस्वीर बदल जाती है, रंग भरने में सहूलत नहीं होती मुझको, रंग भरने में सहूलत नहीं होती मुझको। अक्सर औकात मैं ताबीर बता देता हूँ, अक्सर औकात मैं ताबीर बता देता हूँ, बाज़ औकात इजाज़त नहीं होती मुझको, बाज़ औकात इजाज़त नहीं होती मुझको। इतना मसरूफ़ हूँ जीने की हवस में शायद, इतना मसरूफ़ हूँ जीने की हवस में शायद, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती मुझको, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती मुझको। अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, जख्म खिलते हैं अज़ियत नहीं होती मुझको।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर सामाइन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग और बज्म सजी है भुलाए नहीं भूलते के तहत फिल्मी नगमों की। सामाइन, कई यानी कि मक्खियाँ तो कई किस्म की हैं, लेकिन हम बात करते हैं शहद की मक्खियों की। जानते हैं आप कि शहद खराब क्यों नहीं होता? दरअसल शहद में पानी बहुत कम होता है। इसके अलावा ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी पानी को बुखारात में तब्दील करते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को भी खुश्क करता है और इस तरह खराब नहीं होता। इसके अलावा शहद में एक तेजाब जो कि शहद का ताकतवर तेजाब माना जाता है, ये तेजाब उस वक्त पैदा होता है जब मक्खी ग्लूकोज पर एंजाइम खारिज करती है। उस तेजाब से शहद का पीएच लेवल तकरीबन 3 से 4 तक रहता है। इसके साथ एक और कंपाउंड भी होता है जो बैक्टीरिया की बढ़ने की शरह को कम करता है, जिसकी वजह से शहद खराब नहीं होता। ये जो मीठा और भरपूर सेहत के लिए शहद होता है, वो कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और ज़िंदगी में भी मिठास के लिए, ज़िंदगी में भी मिठास के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर सामईन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग और बज़म सजी है भुलाए नहीं भूलते के तहत फिल्मी नगमों की। मेरी मोहब्बत एक बंद किताब सी है, मेरी मोहब्बत एक बंद किताब सी है, जिसने खोला उसने पढ़ा ही नहीं, जिसने खोला उसने पढ़ा ही नहीं, जिसने पढ़ा वो समझा ही नहीं, जिसने खोला पढ़ा ही नहीं, जिसने पढ़ा वो समझा ही नहीं, और जिसने समझा वो मेरा था ही नहीं, जिसने समझा वो मेरा था ही नहीं।

0: जनरल से शादी, शेख चिल्ली का ये ख्वाब, हर एक जर्रे की ये जुर्रत, छूना चाहे आफताब।
1: किबला खादिम पे न कीजिए इस कदर गुस्सा फिजूल, मैं हूँ आशिक इश्क में, मरना भी है मुझको कबूल।
0: तो मरे।

होती जा रही हैं, तो एक दूसरे के लिए यानी रिश्तों के लिए हम जो वादे करते हैं उसको पूरे करना है, क्योंकि यही तो सबसे बड़े तोहफे हैं ना, कीमती है, लाजवाब है और बेशबहा है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। सामईन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग और बज़्म सजी है भुलाए नहीं भूलते के तहत फिल्मी नगमों की। और बता दूं कि इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात की 10:37 और 34 सेकेंड्स हो रहे हैं। सामईन, बात करते हैं हम रिश्तों की। रिश्तों के बिना तो ज़िंदगी शायद अधूरी मानी जाएगी। तन्हा तो ज़िंदगी बसर की जाने से नहीं की जाएगी, नहीं बसर हो सकेगी। तन्हा इंसान जी ही नहीं सकता, इसी चीज लिए तो उसको समाजी हैवान कहा गया है। रिश्तों को बड़े बड़े वादों की नहीं, छोटे छोटे वक्त की ज़रूरत होती है। एक फ़ोन कॉल, एक मुस्कुराहट, एक मुख्तसर सा पैगाम, यही छोटी छोटी चीज़ें रिश्तों को जिंदा रखती हैं। क्योंकि एहसास हमेशा अल्फाज से बड़ा होता है और वक्त पर दिया गया साथ हर बड़े तोहफे से ज़्यादा कीमती होता है, और इस ज़माने में यही चीज़ें नायाब होती।

मुसाफिर इश्क का हूँ, मेरी मंजिल मोहब्बत है। मुसाफिर इश्क का हूँ, मेरी मंजिल मोहब्बत है। तेरे दिल में ठहर जाऊँ अगर तेरी इजाज़त हो। मुसाफिर इश्क का हूँ, मेरी मंजिल मोहब्बत है। तेरे दिल में ठहर जाऊँ अगर तेरी इजाज़त हो।

समय इसी गीत पर प्रोग्राम भलाई नहीं भूलते के तहत जो फिल्मी नगमे आप सुन रहे थे अब यहीं पर ख़त्म होते हैं। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेनबो 101.9 MHz पर। और अब सुनते हैं पयाम-ए-शब जिसे पेश कर रहे हैं सैयद नदीम अख्तर ज़ैदी।

हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तो, सब कुछ जो जानते हैं वो कुछ जानते ही नहीं। असल इल्म वो है जो इंसान में इंकिसारी पैदा करे। अगर इल्म इंसान को मुतकब्बिर बना दे तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान का सबब बन जाता है। जो शख्स ये समझने लगे कि वो सब कुछ जानता है, दर हकीकत वो सीखने का दरवाज़ा खुद ही बंद कर देता है। दुनिया में इल्म की कोई इंतहा नहीं, जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ

0: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے پیام شب جسے پیش کر رہے تھے سید ندیم اختر زیدی۔ بزم کے اختتام سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ کل اردو پروگرام نیرنگ کی بزم میں پیش کیے جانے والے پروگرام کی جھلک کل آپ سماعت کریں گے۔ نیرنگ میں حرف تابندہ، تحریر و پیشکش ہوگی فہمیدہ فہموش کی۔ نظمیں آپ سماعت کریں گے بزم نظم کے تحت شاعرہ الیاس فاطمہ تشہیر کی۔ گیت سریلے گاتے جا سن سکیں گے آپ، اور پیام شب بزم کے آخر میں۔ تو کل کی تھی یہ تفصیل اردو پروگرام نیرنگ میں پیش کے جانے والے پروگرام کی۔ یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے 101.9 ایف ایم میگا ہرٹس پر۔ سامعین، اب یہ نیرنگ اپنا اختتام پر پہنچتا ہے اس وعدے کے ساتھ کل ٹھیک 9:30 بجے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، شب خیر۔یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، دلی کیندر سے ہندی و انگریزی میں سماچار باری باری ریلے کیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں دلی اور سنتے ہیں سماچار۔
1: की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरला में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता

सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।